सुप्रभात, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 26वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 16 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिन्हें दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्चस्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट

0: कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस। आज आप सुनेंगे इसकी भाग संख्या 405। मुख्य गायक स्वर अनूप जलोटा का और संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

पक्षीराज गरुड़ को श्री रामचरित तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनाने वाले पुण्यात्मा काकभुशुंड के चरित्र में एक लक्षण सब ही मान प्रद आपु अमाना के दर्शन इस प्रसंग में होते हैं, जहां वे कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसका भजन किया जाए, जिन्होंने मुझ जैसे वज्र मूर्ख पर इतना स्नेह बरसाया। पक्षियों में सबसे नीच, सब प्रकार से अपवित्र, क्या मैं प्रभु के भजन का अधिकारी हूँ? किंतु मुझ जैसे अधम अपवित्र को भी प्रभु ने जगत को पवित्र कर देने वाला प्रसिद्ध कर दिया। और एक सच्चे संत की भांति ही काकभुशुंडी गरुड़ के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनसे ये अति पवित्र और पतित पावनी कथा पूछी और सुनी। कहते हैं, मैं धन्य हूँ जो श्री राम ने मुझे अपना जाना और आप जैसे साधु की संगति का सुअवसर प्रदान किया। जिनके चरण शिव तथा ब्रह्मा द्वारा पूजे जाते हैं, उनकी दया मुझ जैसे अकिंचन को प्राप्त हुई, ये उस भक्त वत्सल की मृदुलता ही तो है। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्मयोगी, सन्यासी, कोई भी भगवत भजन किए बिना भव सागर पार नहीं कर सकता।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस भाग संख्या 405। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुविचार। हमारे अंदर अनंत शक्ति और शांति का सागर है। जो शक्ति हम में है, हम उसके बहुत ही कम भाग को जानते हैं। सोचिए, अगर उस संपूर्ण शक्ति को जान जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए सदैव ये याद रखना होगा कि जड़ यदि शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है।

जीवन में जब भाग्य साथ ना दे रहा हो तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत ही हमारा साथ देगी। आकाशवाणी जोधपुर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा की।

महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है और फिर से पुनः उसी ऊर्जा से अपने प्रयत्नों में लग जाने में है। वंदन कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं ये भक्ति रचना, जिसे गाया है डीवी पलुस्कर।

अश्विनी भिड़े देश पांडे को अभी आप सुन रहे थे। यदि हम सत्य और न्याय के पथ पर हैं तो ईश्वर हमारे साथ है। फिर ये अंतर नहीं पड़ता कि कौन हमारे विरुद्ध है और कौन हमारे पक्ष में, क्योंकि हमें निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारी जीत निश्चित है। आकाशवाणी जोधपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदन। आइए इसमें सुनते हैं ये रचना, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम ने।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं उजाला फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है मन्ना डे और साथियों ने। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

बीएन बाली के स्वरों से सजा ये गीत आप सुन रहे थे तिकड़मबाज फिल्म से। आवाज थी सुमन कल्याणपुर की। आकाशवाणी जोधपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम शरारत।

गीता दत्त की आवाज़ में गीत आप सुन रहे थे। नूर देवासी के बोल, विपिन दत्ता का संगीत। ये बॉम्बे है, इस फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7 बज चुके हैं। अगला कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

महकती हुई सुबह में चमकती हुई हंसी के साथ उठ जाइए, क्योंकि आपके कानों से होते हुए हम आपके दिलों में गूंज रहे हैं। जब जब आप तक पहुंच चुका है कुछ बातें कुछ गीत। मैं हूं आपके साथ शैला।

तो भाई अब ये जो दौर है ये कह रहा है कि पानी और पेट्रोल दोनों ही जबरदस्त तरीके से बचा के चलना है। तरस रहा है जी, बिल्कुल दिल तरस रहा है बूंद बूंद पानी को और पेट्रोल डीजल इनकी भी कुछ सीरते हालात गजब नजर आ रही हैं। तो फिर क्यों ना पुराने दौर में फिर से चला जाए, घरों में धूल फांकती साइकिल्स को बाइसिकल्स को एक बार फिर से झाड़ लिया जाए। मुझे लगता है जल्द ही वो दिन दूर नहीं जब हमें या तो अपनी 11 नंबर की गाड़ी पे निकलना पड़ेगा या फिर हरक्यूलिस को याद करना पड़ेगा।

फिलहाल आज का दिन कह रहा है कि मैं हूं शनिवार। ये सप्ताह पूरा होने को है और जनाब याद दिला दूं कि मई का ये जो महीना है ये आधा निकल चुका है। जो जो आपने सोचा था अगर वो नहीं कर पाए हैं तो लग जाइए आज से, अभी से, इसी वक्त से वीकेंड की सुस्ती नहीं लाने का। बिल्कुल खुद को याद दिला दीजिए कि एक तू ही तू ही तू ही जो भी है बस तू ही है, तुझे ही सब कुछ करना है, तुझे ही सब कुछ हासिल करना है। बने रहिएगा कुछ बातें कुछ गीत।

0: सुबह उठते ही चेहरे पर मुस्कान रहे, हर एक दुख आपसे कोसों दूर रहे, महक उठे आपकी जिंदगी, ऐसा शुभ दिन आपका आज रहे। सुबह उठते ये जो फॉरवर्डेड मैसेजेस से हमारी स्क्रीन भर जाती है, हे भगवान इससे मुक्ति दिला दो।
1: छोटी जो बात थी,
0: क्या जिंदगी में दूसरे झंझट कम है जो इतने सारे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, सुप्रभात, शुभ प्रभात किए जाएं और उसके बाद बैठ के उनको एक एक साफ सफाई किया जाए।

क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कुछ चीज रख के भूल जाते हैं? कहीं गए एक कमरे से दूसरे कमरे में और फिर वहां जाके सोचने लग गए, मैं यहाँ आखिर क्यों हूँ? और मजे की बात ये कि वापस मुड़ के उसी जगह आने पर याद आता है, ओ मैं यहाँ इसलिए आई थी। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल हम बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप भूल रहे हैं, बिल्कुल ये तथ्य है, लेकिन इसमें भी फायदा है। बिल्कुल बताती हूँ, फिलहाल जी ले जरा।

जी ले जरा, क्योंकि भूलना भी फायदेमंद है। फायदा यह है कि मनोविज्ञान ये कहता है कि चीजों को भूलना एक अच्छे दिमाग की निशानी है। तो जो लोग फालतू बातों को जल्दी से भूल जाते हैं, उनका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव और शांत होता है। हर कहानी में। लेकिन यहाँ मैं जरा रेखांकित कर दूँ इस बात को कि फालतू बातों को, अगर आप काम की बातों को भूल रहे हैं और उसके बाद खुश हो रहे हैं कि अरे वाह, हम तो बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, एक यू टर्न मारने की जरूरत है। तो अपनी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि काम की बातों को ना भुलाए, और इसके लिए सुबह सुबह 2 मिनट का मौन बेहद फायदेमंद है। फिलहाल मौन का समय निकल चुका है, क्योंकि मेरी बातें तो चलेगी, और खास करके आज की मेरी प्लेलिस्ट में ऐसे गाने हैं जो आपको बेहद एनर्जेटिक बनाने वाले हैं।

अरे भाई, अगर अपना स्क्रीन टाइम इसी तरह बढ़ाते रहोगे तो चैन की नींद कैसे आएगी? अब ये देखो, सुबह से उठते ही हमने स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। नहीं, नेवर, कभी नहीं। अरे छोड़िए ये सब, जरा आसपास देखिए, देखने को कितना कुछ है। जरा आसपास देखिए, बात करने को कितने लोग हैं। जरा आसपास कान लगा के सुनिए, सुनने को कितना कुछ है। तो फिर ये 6 हाथ भर का जो ये स्क्रीन है, इसे क्यों हाथ में लेकर चलना है? क्यों ही इसमें बंधना है? अरे जरूर सामने वाला बताएगा, जरा उसके पास जाके बैठिए तो सही। मैं तो यही कहती हूँ, वीकेंड के ये जो 2 दिन आपको मिल रहे हैं, जाइए अलग अलग दोस्तों के पास और उनके पास जाके बैठ के पूछिए, तू बता भाई।

और अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी से बातचीत नहीं करनी है, सप्ताह भर मैंने यही तो किया है, बहुत से लोगों के बीच में घिरा हुआ हूँ, घिरी हुई हूँ, लेकिन अब तो सिर्फ अपने साथ वक्त बिताना है। तो इसमें भी बिल्कुल बुराई नहीं है, हमारे पास इसके लिए भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बात है।

बिल्कुल, अगर आप भी उसी टाइप के हैं कि मुझको मैं ही मिलूंगा मिलूंगी, तो फायदे की बात यह है कि जो लोग खुद से बातें करते हैं, कहा गया है कि वे मानसिक रूप से ज्यादा स्मार्ट होते हैं और सुलझे हुए होते हैं।

खुद से बातें करने वाले लोग अपने आप को फोकस बेहतर तरीके से कर पाते हैं, उनका दिमाग उन्हें एकाग्र करने में मदद करता है।

खुद से बात ही करना अच्छा है, लेकिन इस बात को कतई नहीं भूलना है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। आखिर हम सोसाइटी में रहते हैं और हमें एक दूसरे से संवाद बातचीत करना तो बहुत जरूरी है। तो थोड़ा वक्त खुद के लिए, थोड़ा औरों के लिए, बस देखिए पर जिंदगी की गाड़ी कैसे सरपट दौड़ती है।

कहते हैं कि आप जिस तरीके का संगीत सुनते हैं, जिस तरीके के गाने आप सुनते हैं, असल में जिंदगी में आप दुनिया को उसी नजरिए से देखने लगते हैं।

तो जल्दी से आज के दिन की शुरुआत कर लीजिए ये सोचते हुए कि क्या क्या करना है और ना भूलते हुए कि क्या क्या नहीं करना है। जी हाँ, हमें हाँ करना आना चाहिए, हमें बातों को हाँ कहना आना चाहिए, काम को करना आना चाहिए, लेकिन हाँ के अलावा एक और शब्द भी दुनिया में है, ना। ना कहना भी आना चाहिए और कुछ काम को नहीं करना भी बेहद जरूरी है। तो बिल्कुल जब आप ना करें तो दिल से ना करें और सामने वाले को ये पता चल जाए कि नहीं मतलब नहीं। फिलहाल हाँ कर दीजिए आज के दिन को, और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम हर सुबह आपके साथ यूं ही मिलते बतियाते गाते गुनगुनाते रहेंगे। कुछ बातें कुछ गीत में मैं थी शैला आपके साथ लेती हूँ आपसे विदा। टाटा बाय, आपका दिन शुभ हो।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुबह के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में $5 अरब के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन

0: स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। उर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर ये शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई

0: प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
1: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह सेफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों

0: को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई।

0: सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं, वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपये महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपये बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में आप सभी श्रोताओं का हम दिल से स्वागत करते हैं। आज 16 मई 2026 के अंक के साथ हम हाजिर हैं। स्वीकार कीजिए गुलनाज खान और
1: कविता का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: और चूंकि हम आपके दोस्त हैं तो हवाओं ने रंगत बदल ली है, फिजाओं ने भी अपनी आदत बदल ली है, तो सबको मालूम है कि बाहर की हवा है कातिल, तो यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। तपिश इतनी बढ़ गई है, खुद को घर में ही रखना बेहतर है। कहते भी है ना कि दिल बहलाने के लिए घर में वजह काफी है, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है।
0: जी, दोस्ती घर है तो दोस्ती जताने की जरूरत क्या है।
1: दोस्ती ना सही, दस्तूर तो निभाना होता है।
0: जी हाँ, दस्तूर को निभाते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, साल 2026 का 136वां अंक लेकर हम हाजिर हैं। पांचवा महीना है, तीसरा शनिवार है, दो सूत्रधार हैं और एक अंक है। नित नई जानकारियों और सुरीले गीतों से सजाकर हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और नमस्कार के इस अंक में बहुत सारे विषय आप तक पहुँचाएं, बहुत सारी बातें आपके साथ साझा

0: करें उससे पहले आपका परिचय करवा देते हैं आज की नमस्कार टीम से।
1: तो ट्रांसमिशन से हमें साथ मिल रहा है फारूख अहमद शेख और चंद्राराम पटेल का।
0: तकनीकी सहयोग के साथ कंट्रोल रूम में मौजूद सुनील जयपाल।
1: प्राइमरी चैनल पर अनाउंसर ऑन ड्यूटी शैला महेश्वरी।
0: कंसोल पर एफएम चैनल पर हैं साक्षी परिहार।
1: और हमारे इस कार्यक्रम का संयोजन किया है राजेश लामरोड ने।
0: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के प्रस्तुतकर्ता हैं संजय व्यास। पूरी टीम के साथ आवाज और जज्बात के साथ आपसे मुखातिब गुलनाज खान और
1: कविता।
0: नया दिन उजले सवेरे हाजिर है लेकर गाने नए नवेले।

0: हर इंसान जब स्याह रात के बाद जागता है तो आंखों में बहुत सारे सपने लेकर जागता है। कुछ सपने मुकम्मल हो जाते हैं तो कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं और फिर जिंदगी का सफर चलता रहता है। कविता जी, ऐसा है कि जब भी हम मिलते हैं, मुलाकात होती है हमारी, तो हम अक्सर उजले सवेरे की बात करते हैं, स्याह रात की बात करते हैं, मसरत भरे दिनों की बात करते हैं, मुश्किल और गमगीन रातों की बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दिन और रात, मसर्रत और गम के बीच में वो लम्हात भी आते हैं जो इन सब के गवाह बनते हैं। और वो लम्हे हर उम्र में हमारे साथ रहते हैं। कई शब्द ऐसे हैं जिसके मायने जिंदगी में हमेशा बदलते रहते हैं,
1: उम्र दर उम्र बिल्कुल अलग हो जाते हैं,
0: चाहे वो बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई है आज इस मंच पर, तो हम उन्हीं दिनों को याद करते हैं और कुछ
1: तो
0: बातें,
1: हम एक एक शब्द को चुनते हैं।
0: हाँ,
1: है ना,
0: ऐसा करते
1: कोई
0: हैं।
1: एक शब्द चुनते हैं और उस शब्द के मायने जिंदगी में किस तरह बदलते जाते हैं उस पर बात करते हैं।
0: जी
1: पहले
0: बिल्कुल,
1: शब्द चुनिए आप।
0: देखिए, जिंदगी की जब बात हुई है तो जिंदगी खूबसूरत हो कौन नहीं चाहता,
1: बेशक।
0: तो चलिए सुंदरता से ही शुरू करते हैं। सुबह सुबह का माहौल है, बहुत ही खूबसूरत नजारा हमारे श्रोताओं के भी सामने है,
1: जी,
0: तो खूबसूरत शब्द को लेते हैं हम
1: हमारे
0: पहले।
1: बचपन में खूबसूरती की परिभाषा है हमारी माँ।
0: हाँ
1: क्योंकि उससे बेहतर, उससे खूबसूरत कोई चेहरा नहीं।
0: जी, और देखिए, बचपन में हर बच्चे के चेहरे पर जो खूबसूरती होती है वो बहुत ही नैसर्गिक होती है।
1: बिल्कुल,
0: ये कुदरत की
1: निश्चय
0: देन है, बच्चा बगैर किसी मेकअप के अच्छा लगता है,
1: बहुत सुंदर, उसकी
0: बड़ी।
1: मुस्कान बड़ी निश्चल
0: हाँ
1: लगती
0: जी,
1: है।
0: ये शब्द हम बाद में ले लेंगे अभी खूबसूरती से शुरू करते हैं, उसके बाद देखिए आगे आगे, देखिए होता है क्या। तो ये खूबसूरती जो है वो बड़ी ही नैसर्गिक होती है। जवानी में जब यौवन अपने उछाल पर होता है तो फिर चेहरे का नूर देखते ही बनता है।
1: बिल्कुल, और वहीं जैसे उम्र ढलने लगती है तो बिना दस्तक दिए वो एक सलवट है जिसे कोई नहीं चाहता, वो चेहरे पर अंकित होना शुरू हो जाती है। और वहां लगता है कि हमने जिंदगी के कितने अनुभवों को जिया, और
0: जी
1: जब भी शीशे में देखते हैं तो अपना आंकलन जरूर करते हैं कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ तक आ गए हैं, और अभी भी जिंदगी में क्या बाकी है। वहां पर ठहर कर सोचने की जरूरत रहती है, और सोचते भी हैं हम लोग,
0: बिल्कुल, और उन झुरियों में भी अनुभव का एक बहुत बड़ा जखीरा होता है,
1: और वो भी खूबसूरती की मिसाल
0: उसमें
1: बनता
0: भी
1: है।
0: खूबसूरती है। देखिए, कभी भी वक्त मिले तो किसी बुजुर्ग को आप ठहर कर जरा देखिए, उसमें भी फिर वही बात, बगैर मेकअप के इतना खूबसूरत लगता है वो चेहरा, जिसमें जो नूर होता है वो
1: जी
0: उनके उस अनुभव का नूर होता है, जो
1: बेशक,
0: जिंदगी उन्होंने जी होती है उसकी एक सुकून की, कहना चाहिए कि झुर्रियां होती हैं वो
1: बिल्कुल।
0: तो
1: हाँ,
0: हम इसमें भी
1: और हम भी
0: सुकून
1: जब
0: ढूंढ रहे
1: उनसे
0: हैं।
1: मिलते हैं तो उनकी झुर्रियों में उनके जीवन के अनुभवों को तलाशते हैं, है
0: बिल्कुल, और
1: ना,
0: बड़ा अच्छा लगता है बुजुर्गों से
1: बहुत अच्छा
0: मिलकर।
1: लगता है, और वो शक्ल भी बेहद खूबसूरत लगती है।
0: देखिए, वैसे ही एक बच्चे से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक जवान व्यक्ति से मिलकर दिल में बहुत सारी बातें आती है कि ये
1: जी
0: हमारे साथ अच्छा करने वाला है या नहीं करने वाला, इसके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा,
1: जी जी
0: लेकिन एक बुजुर्ग से मिलते हैं तो फिर वही बचपन वाली बात कि अच्छा
1: जी
0: लगता है।
1: हाँ,
0: चलिए, अच्छा लगता
1: अच्छा
0: रहे,
1: लगता रहे
0: और
1: जी, इसी सफर में भी हम आगे बढ़ते रहे। ये प्यारा सा गाना आपके लिए।

0: बदल गए हैं जिंदगी के मायने, है ना
1: जी हाँ, और उसमें संवारने की भी बात है
0: जी। और संवारने के लिए हम अगर बात करें तो बचपन में शब्दों के जो मायने कम होते हैं, हम
1: शब्द समझ ही नहीं आते
0: हम
1: थे।
0: अपनी मुस्कान से सारे ही काम करवा लेते हैं, है ना। मतलब जरा सा मुस्कुरा दिया और सामने वाले जो है वो खुद ही बिच बिच जाते हैं। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आती है, शब्द समझ में आना शुरू होते हैं, तो वहां से हम सीख लेते हैं कि कैसे शब्दों का खेल जो है जिंदगी में काम आता है।
1: बिल्कुल, देखिए बचपन में माँ बच्चे को बोलना सिखाती है, तुतलाते हुए हम इस दुनिया के कुछ शब्दों को सीखते हैं। जवानी में जब घर से बाहर निकलते हैं तो दुनिया हमें बहुत सारे शब्द और शब्दों के मायने और क्या कहना चाहिए शब्द कोश हमें सिखा देती है। और उसके बाद जैसे जैसे अनुभव बढ़ता चला जाता है, हमारे शब्द कोश में बहुत सारे शब्द इकट्ठे होते चले जाते हैं।
0: फिर भी हम उसका इस्तेमाल कम करना,
1: उसके बाद देखिए जब बुजुर्ग हो जाते हैं, वही बचपन वाली बात आ जाती है कि अटक कर एक शब्द बचपन में बोला करते थे, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो एक शब्द में कितना भार होता है। बुजुर्ग एक शब्द बोल दे तो पूरा उसका जो मतलब है वो उसमें पूरी जिंदगी समाई होती है
0: जी। तो इसमें उच्चारण का महत्व है,
1: हाँ वही दांत गीत में आ जाते हैं। बचपन में दांत नहीं होते तो उच्चारण वैसा नहीं निकलता, उसके बाद ऊपर वाले की इतनी मेहर होती है कि 32 दांत 30 दांत इंसान को मिल जाते हैं, तो बड़ा चबा चबा के शब्दों को बोलता है। और फिर जब बुजुर्ग हो जाते हैं
0: फिर वही दांत साथ छोड़ देते हैं।
1: उस पोपले मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जरा सुनने में जरूर मुश्किल होता है लेकिन
0: समझना बड़ा भारी काम हो जाता है, है ना? और जो समझ जाए उसकी जिंदगी
1: संवर जाती है जी।

0: बहुत ज्यादा वजह नहीं ढूंढनी पड़ती है ना। जो चेहरा अच्छा लगता है, प्यार देता है, पसंद आता है, मुस्कुराहट अपने आप ही आ जाती है। और बेवजह नहीं मुस्कुराता बच्चा कभी भी, है ना?
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जवानी में हम कई बार इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि बेवजह नापसंद चेहरों के सामने भी मुस्कुराने लगते हैं।
1: जी हाँ, धीरे धीरे हम एक मुखौटा ओढ़ लेते हैं, वो मुखौटा जो मुस्कुराता रहता है जहाँ ज़रूरत होती है, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर एक नज़र को तिरछी करके भी देखने की अदा आ जाती है जवानी में।
0: जी,
1: वो है ना कि जवानी में नज़र कभी झुकती है, कभी उठती है, कभी तिरछी
0: कभी
1: होती है,
0: तीखी होती है,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: नज़र के माने बदल जाते हैं, मुस्कुराहट के भी माने बदल जाते हैं। और जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो इतनी समझ में आ जाती है कि सामने वाला मुस्कुरा कर देख रहा है या देख कर मुस्कुरा रहा है। तो इतना तो पता चल जाता है कि भाई तेरी
0: कि इसकी
1: मुस्कुराहट में क्या
0: हाँ
1: है।
0: छुपा क्या है, उसके पीछे की राज क्या है ना। लेकिन बुजुर्ग जब मुस्कुराते हैं ना,
1: बड़े प्यारे लगते
0: बड़े ही खूबसूरत
1: हैं।
0: लगते हैं ना।
1: जी
0: और उनकी जो मुस्कुराहट होती है वो कई सारी बातों को याद दिला देती है हमारी अपनी जिंदगी में। कहते हैं ना कि एक पल किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाओ, पूरे दिन की एनर्जी आपको मिल जाती है ना।
1: जी
0: और जब चरण छूते हैं वो मुस्कुराकर कहते हैं जीते रहिए, खुश रहिए, तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशियां सच में हमारी झोली में आ गई।
1: अच्छा, जो परेशानियां हम लेकर किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं ना, वो भी भूल जाते हैं कि अच्छा हमें कोई परेशानी थी क्या, क्योंकि हमारे सामने हमारा मुस्तकबिल होता है। तो हमें लगता है कि इस बुजुर्ग ने भी वो सारी परेशानियां झेली हैं और उस मुकाम से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं और कितने मुस्कुरा रहे हैं, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
0: हाँ, और उनमें एक और क्वालिटी होती है, आप बोले ना बोले, आप मुस्कुराएं ना मुस्कुराएं, आपके भीतर क्या चल रहा है आपकी धड़कने तक वो सुन लेने की ताकत रखते हैं।
1: बिल्कुल। और कहते भी है ना कि अगर किसी बच्चे को आप देखते हैं, बच्चे के गाल जो हैं वो गुलाबी हैं और उस पर मुस्कुराहट सजी है, तो ये मानकर चलिए कि उस बच्चे को बहुत मोहब्बत मिलती है। और फिर उसी तरीके से जब बुजुर्ग मुस्कुराते हैं तो ये भी समझ में आ जाता है कि उनके घर में सब कुछ ठीक है,
0: ठीक है।
1: उनकी सेवा भी अच्छे से हो रही
0: जी
1: है,
0: जी
1: क्योंकि बहुत कुछ बगैर बोले भी
0: कह
1: समझ
0: देता
1: आ
0: है
1: जाता
0: इंसान,
1: है।
0: बिल्कुल।

0: जिस तरह से फूलों पर नमी होती है, बस कुछ उसी तरह से बचपन में मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर सजी होती है। बचपन की जो मुस्कुराहट होती है ना कविता जी, वो बड़ी ही निश्चल सी होती है, सहज और सरल होती है। और फिर जवानी में मुस्कुरा कर देखना है तो उसके माने बदल जाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: है ना।
1: एक और बात नोटिस में आती है कि बचपन में मुस्कुराने के लिए

0: भाई साथ बैठते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, और फिर कुछ बातें अधूरी भी रह जाती हैं और अगली मुलाकात के लिए हम लोग मिलने की उम्मीद करते हैं। बहरहाल श्रोताओं, हम कार्यक्रम के उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर हम एक न्यूज़ ब्रेक के लिए रुकते हैं। कार्यक्रम में 9:10 पर फिर हाजिर होते हैं, एक न्यूज़ ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।
1: हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वगणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

0: समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात से नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उन्होंने आबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर

0: भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: नीदरलैंड्स के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल राज उन्नति की बैठक में 33,039 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रोजेक्ट्स को तय टाइमलाइन के अनुसार पूरा करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले की पीने के पानी से जुड़ी शिकायतों को तत्परता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्र हित में ईंधन की बचत और ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द ई बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित शहरों में डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के काम को पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित अन्य प्रमुख शहरों में ई बसें चलाई जाएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित कर दिया गया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एनटीए ने पिछले 24 घंटों में देश भर में अनेक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामले में अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एसआई भर्ती 2021 परीक्षा 20 सितंबर को दोबारा होने जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थी आज से 30 मई तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पते को अपडेट कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस परीक्षा में वही 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे जो पहले दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इस परीक्षा में अवसर नहीं दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल पूछेंगे। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशक विनेश सिंघवी ने बताया कि प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वयं गणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों ने खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर 12 जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है।
2: आदिवासी लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध सीताबाड़ी के धार्मिक मेले का शुभारंभ आज होगा। ये मेला सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार ये वही पवित्र स्थान है जहाँ माता सीता ने निर्वासन के दौरान वाल्मीकि आश्रम में निवास किया था। ये मेला रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ 7 पवित्र कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड आदि हैं, जिनमें ज्येष्ठ अमावस्या को स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जहां लवकुश का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहां समुदाय अपनी परंपराओं का जश्न मनाता है और उनके पारिवारिक विवाह भी होते हैं। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12।
1: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इसका उद्देश्य मॉनसून

0: से पहले डेंगू रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना और मच्छरों के नियंत्रण के प्रयास करना है। ये बीमारी एडीज मच्छर के काटने से होता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मच्छरों के नियंत्रण के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ सौरभ जैन ने बताया कि समय पर पहचान और इलाज नहीं मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
1: विश्व डेंगू दिवस पर आप सभी से अपील है कि डेंगू से बचाव के लिए सजग रहें, अपने घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें, कूलर, गमले और टंकियों की नियमित सफाई करें, पूरी बांह के कपड़े पहने और मच्छरदानी या रिपेलेंट का उपयोग करें। याद रखें, डेंगू का इलाज नहीं, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आइए मिलकर स्वच्छता अपनाएं और डेंगू मुक्त समाज बनाएं।
0: राज्य में कल से तापमान में बढ़ोतरी और हीट वेव का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। पिछले दो तीन दिन से कई हिस्सों में जारी आंधी बारिश से पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। गर्मी के कल से फिर जोर पकड़ने के आसार हैं। इस बीच कल फलौदी और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। अन्य स्थानों पर पारा सामान्य के आसपास या उससे नीचे रिकॉर्ड हुआ। वहीं जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावटी अंचल में कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। आईपीएल क्रिकेट में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रात चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 38 गेंद में 90 रन की पारी खेलने के लिए मिशेल मार्श को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वगणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा के सूर्य नगरी चैनल और एफएम सन सिटी चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम, नाम है जिसका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और इस समय आपसे मुखातिब हैं गुलनाज खान और
3: कविता। और दोस्तों, बड़ा गौरव महसूस होता है जब भी इतिहास के पन्ने पलटते हैं, क्योंकि इतिहास में दर्ज वो घटनाएं जो आज भी कहीं ना कहीं हमारा आदर्श स्थापित करती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है खास आज के दिन इतिहास में।
2: श्रोताओं, 1881 में बर्लिन के पास लिस्टर फेले में बिजली से चलने वाली विश्व की पहली ट्राम सेवा की शुरुआत हुई थी। आज के दिन इसे जर्मन आविष्कारक वर्नर वॉन सीमेंस ने विकसित किया था।
3: और दोस्तों, आज ही के दिन 1911 में कोलकाता में बने तल्लाह वाटर टैंक का निर्माण पूरा हुआ था। इसे उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ओवरहेड वाटर टैंक कहा गया। इसका उद्घाटन आज ही के दिन हुआ और कहा जाता है आज भी ये वहां जलापूर्ति करता है।
2: साल 1929, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत आज के दिन हुई थी। श्रोताओं, इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिभावान कलाकारों को सम्मान देना था। कैलिफोर्निया में तकरीबन 250 लोगों की उपस्थिति में इस समारोह का आयोजन हुआ था।

डायरेक्टर विलियम वेलमैन की फिल्म विंग्स ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। इस समारोह में कुल 12 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे। शुरुआत में इस अवार्ड को एकेडमी अवार्ड फॉर मेरिट के नाम से जाना जाता था। 1939 में इसका नाम बदलकर ऑस्कर कर दिया और आज फिल्मी दुनिया में काम करने वाले हर कलाकार के लिए ऑस्कर जीतना एक सपने जैसा है और एक सपना सभी का होता है ऑस्कर का।

0: ब्रिटेन के बीच टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई थी।
1: उन्नीस सौ इक्यानवे में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली ब्रिटिश साम्राज्ञी बनी थी आज के दिन।

0: और आज ही के दिन 2013 में एक वैज्ञानिक उपलब्धि दर्ज होती है। 16 मई का दिन था और 1913 में अमेरिकी वैज्ञानिकों को इंसानी भ्रूण के क्लोन से पहली बार स्टेम सेल निकालने की सफलता प्राप्त हुई थी।
1: श्रोताओं, 1996 में आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

0: और दोस्तों, आज ही के दिन 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था।
1: उन्नीस सौ निन्यानवे में दक्षिण का सन 2002 में होने वाला शिखर सम्मेलन थिम्पू में कराए जाने की घोषणा की गई थी आज ही के दिन। श्रोताओं, दक्षिण एशिया के 7 देशों का संगठन है जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अंग्रेजी में इसे सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है।
0: और दोस्तों, 2006 में आज ही के दिन न्यूजीलैंड के 47 वर्षीय मार्क एंजेलिस अपने पहले पर्वतारोही बने जिन्होंने कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराया।
1: सन 2010 में अजलन शाह कप हॉकी प्रतियोगिता में पिछले विजेता भारत और दक्षिण कोरिया को बारिश के कारण मैच न खेले जाने के कारण संयुक्त विजेता घोषित किया गया था आज ही के दिन। और क्रिकेट में वेस्टइंडीज में आयोजित 2020 विश्व कप के निर्णायक मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के 147 रनों के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया था और पहली बार विश्व विजेता बना था सन 2010 में आज ही के दिन।

0: सवेरे होते ही जिंदगी की शुरुआत होती है ऐसा लग जाता है। और ये एक मूर्छा है जो रात में हमारे साथ जुड़ी रहती है और उससे हम जाग उठते हैं। और अगर सोच कर देखें तो स्वास्थ्य हो, वनस्पति हो, विज्ञान हो, अगर सूरज नहीं, सूरज की रोशनी नहीं, तो शायद कुछ भी नहीं।
1: वो कहते भी है ना कि वो पत्ते पीले ही रह गए जिन्हें छांव में रखा गया, उन्हें रोशनी, उन्हें धूप सहन करनी होगी जिन्हें बादलों की तलाश है। रोशनी जीवन में आगे बढ़ने का संकेत भी देती है। अगर आप इसे दिल से महसूस करना चाहते हैं तो पहाड़ों में जब आप घूमने जाते हैं और वहाँ पर आपको एक डर सा लगता है, अंधेरा होता है, गाड़ी चला रहे हैं आप, कहीं चट्टान है, कहीं खाई है, न जाने अगला मोड़ क्या हो, कुछ इस तरह के मनोभाव आपके दिल में रहते हैं। और ऐसे में कहीं एक गांव में कुछ रोशनी नज़र आ जाती है, टिमटिमाते हुए बल्ब की रोशनी जो होती है वो आपको ऊर्जा देती है और
0: आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देती
1: बिल्कुल बढ़ाती है। तो
0: है।
1: रोशनी चाहे दीपक की हो, बल्ब की हो, सूरज की हो, या आशावान रहने के चंद शब्द भी रोशनी भरे हो,
0: ज्ञान
1: वो
0: की हो, बिल्कुल रोशनी जरूरी है।
1: बहुत माने रखती है। और उसी बात के मद्देनजर आज का दिन बहुत खास है। आज मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस।
0: ये दोस्तों हर साल 16 मई को ही मनाया जाता है और भौतिक विज्ञान और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा ये 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ भी है। लेजर इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक वैज्ञानिक खोज संचार, स्वास्थ्य सेवा और अन्य कई क्षेत्रों में समाज को क्रांतिकारी लाभ पहुंचा सकता है।
1: जी हाँ, ये दिन वैज्ञानिक सहयोग को प्रोत्साहित करने और शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का आह्वान करता है। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका को सम्मानित करने का भी अवसर है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि प्रकाश सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि ज्ञान, खोज और जीवन का प्रतीक भी है। प्रकाश हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करता है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, संचार हो, शिक्षा हो, या फिर पर्यावरण की सुरक्षा। प्रकाश आधारित तकनीकें जैसे फाइबर ऑप्टिक्स, लेजर और सोलर पैनल से हम तेज संचार, सर्जरी और स्वच्छ ऊर्जा में क्रांति ला सकते हैं। प्रकाश सिर्फ देखना नहीं सिखाता श्रोताओं, सोचने की रोशनी भी देता है। तो आइए इस दिन हम ये संकल्प लें कि हम प्रकाश की इस शक्ति का उपयोग ज्ञान, विज्ञान और विकास के लिए करेंगे। और अंधेरे से लड़ने के लिए तो एक किरण ही काफी है।
0: किरण ही काफी है।

0: इस सूरज से आंख मिलाने का वक्त सबका अलग अलग होता है। सुबह सवेरे अगर नजर मिला ली तो मिला ली, उसके बाद हमारे आपके बस में नहीं है सूरज से नजर मिलाना।
1: फिर तो आप अगर सूरज से नजर मिलाएंगे तो फिर किसी और से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे।
0: हाँ, और अगर आप 8 बजे उठकर नजर मिलाना चाहते हैं तो जरा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक जगह ऐसी है हमारे ही देश में जहाँ पर सूरज बहुत जल्दी उगता है, या कहना चाहिए कि सुबह सादिक, जिसे आप कहते हैं अल सुबह, यहाँ की अल सुबह होती है, वहाँ पर सूरज अपने शबाब पर आ जाता है। पूर्वोत्तर में जैसे जैसे चलते चले आते हैं ना आप,
1: हाँ ये पहाड़ों पर है
0: हाँ,
1: ऐसा है
0: हर
1: ना?
0: पहाड़ हर पहाड़ पर चढ़कर सूरज जल्दी दिखता है। जी
1: वैसे
0: हाँ
1: वैसे सुनने में यही आता है कि पहाड़ों पे सुबह भी जल्दी होती है, शाम भी जल्दी होती है। और जैसा अभी आपने कहा भी था कि पहाड़ों पर जब अंधेरा डराता है तो जाहिर सी बात है रोशनी भी बहुत लुभाती होगी।
0: बहुत लुभाती है, और उस समय तो पहाड़ की जो बर्फ से ढकी चोटियां जो दिन में नजर नहीं आती, उसकी खूबसूरती का तो आलम यह है कि सुबह सुबह आप 4 बजे वहां पहुंच जाइए, और उसके बाद जो चोटियां हैं उनके ऊपर हल्की हल्की लाली जो नजर आती है ना, जो अभी हमने गाना बजाया था तू लाली है
1: लाली है
0: सवेरे
1: सवेरे
0: वाली,
1: वाली।
0: उसका असल लुत्फ आपको तभी मिलता है।
1: तो चले
0: चलते हैं, कहाँ चलें आज, तो देखिए सिक्किम में चलते हैं, क्योंकि वहां के लोग आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं और
1: जी
0: अच्छी खासी हमारी आवभगत भी होने वाली है।
1: बिल्कुल। और कहा ये जाता है, पढ़ा ये जाता है कि ये बहुत छोटा सा अंगूठे के आकार का भारत का एक बेहद अनमोल रत्न है सिक्किम,
0: जी
1: और ये पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत पहाड़ी राज्य है। और आज ही के दिन 1975 को भारत का 22वां राज्य बना।
0: जी हाँ श्रोताओ, स्वतंत्रता से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र बौद्ध राजशाही था, नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित प्रदेश था, तिब्बत और भारत के बीच स्थित सामरिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण राज्य था, और 1947 में भारत की स्वतंत्र

0: के बाद सिक्किम ने भारत के साथ संरक्षित राज्य के रूप में एक विशेष समझौता किया था और फिर समय के साथ राजनीतिक स्थितियों में बदलाव आया और सिक्किम की जनता ने लोकतांत्रिक शासन और भारत में शामिल होने की मांग की थी। और जैसा कि अभी आपको बताया, 1975 में एक जनमत संग्रह हुआ था और उसके बाद आज ही के दिन 16 मई 1975 को भारतीय संसद ने एक संविधान संशोधन पारित कर सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य घोषित कर दिया था और ये भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। और इसके साथ ही वहां पर राजशाही का अंत हुआ था और भारतीय संविधान की नियम प्रणाली के अंतर्गत यहां पर प्रजातंत्र का उदय हुआ था। श्रोताओं, आज का दिन न केवल राजनीतिक एकता का प्रतीक है बल्कि सिक्किम की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक समृद्धि को सम्मानित करने का भी बहुत ही सुंदर अवसर है। और सिक्किम अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपका, देखिए अभी तो मई का महीना चल रहा है, छुट्टियां हैं आगे, तो सिक्किम का प्लान कर सकते हैं। सिक्किम के लोग आवभगत बहुत अच्छी करते हैं और उनको सिविक सेंस बहुत अच्छी है।
1: हाँ, वहाँ सांस्कृतिक एक अनूठा ताना बाना बुनता है क्योंकि नेपाली, भूटिया, लेप्चा कई तरह के समुदायों के मेल से ये बना हुआ है और यहाँ की शांति, यहाँ की जैव विविधता और कंचनजंगा की चोटी देखना अगर आप चाहते हैं।
0: क्या बात है, गैंगटॉक भी देखिए आप, नाथुला दर्रा भी देखिए, यामथंग वैली देखिए, गुरु डोनमोर्ग झील भी आप जाएं, बेहद खूबसूरत है। और एक बात मैं बताऊं, बहुत शौक है मुझे घूमने का, जब जब घूमते हैं, अलग अलग राज्य देखते हैं, शहर देखते हैं, लेकिन सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसी मुझे जगह नजर आई है जहां पर सार्वजनिक, जो हम कचरा पात्र कहते हैं, जहां पर रखा होता है, वो इतना खूबसूरत होता है, चारों तरफ उसके गमले लगे हुए हैं, फूल खिले हुए हैं और वो जगह ऐसी नहीं लगती कि गंदगी आपको नजर आए। बहुत ही साफ सुथरा, अच्छा सा शहर है, अच्छी जगह है और देश का पहला पूर्व जैविक राज्य भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और हरित क्रांति के क्षेत्र में भी सिक्किम ने उल्लेखनीय प्रगति की है। यहाँ के लोग मिलनसार हैं, शांत हैं और सुंदर पर्वतीय श्रृंखलाएं जो है ना, वो बाहें पसारे आपका इंतजार करती हैं।
1: तो
0: चले
1: चले

0: करते हैं तो तीसरा बीच में आकर यही कहता है शांत हो
1: शांत हो
0: जाओ,
1: जाओ।
0: सबसे पहले यही शब्द कहा जाता है शांत हो जाओ।
1: जी
0: तो बस शांत रहिए ना, आजकल तो वैसे भी मोबाइल हमारे हाथ में है तो कहाँ बात करते हैं। शब्दों से आजकल झगड़े ज्यादा होते हैं व्हाट्सएप पर,
1: जी
0: बाकी तो शांति ही रहती है। पर फिर भी कहीं किसी से अनबन है तो शांत भाव से आप उसे सुलझा सकते हैं।
1: और सुकून को सुनने की आदत डालते हैं तो ये आपके खुद के लिए बड़ी रोचक होती है, क्योंकि सुकून भी बहुत कुछ कहता है।
0: बिल्कुल, कहता है प्यार, सुकून, शांति, आपसी मेल मिलाप कड़ी दर कड़ी जुड़ता चला जाता है और जिंदगी की बहुत ही खूबसूरत माला बना देता है।
1: तो चुप रहते हैं, शांति से सुनते हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब बात खास। जी हाँ, बहुत सारी खास बातों में एक खास बात यह है कि जोधपुर में एक खास आयोजन हुआ था। पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत की पंच धातु से निर्मित आदमकद प्रतिमा का गुरुवार को लोकार्पण किया गया था। शहर के रातनाड़ा स्थित मुख्य मार्ग पर यह आयोजन संपन्न हुआ था और प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया था। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और ये प्रतिमा 1100 किलो पंच धातु की है और 12 फीट ऊंची है। जब भी आपका रातनाड़ा की तरफ जाना हो, इस प्रतिमा को आप जरूर देखिएगा।
1: और एक खास बात और है, आज कर्म फलदाता शनिदेव की जन्म जयंती है। आज ही के दिन सूर्यपुत्र शनिदेव का जन्म हुआ, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। तो आज शनिवार का दिन भी है और अमावस्या भी है, शनि जयंती भी है, तो इस दिन का अनंत गुना महत्व बढ़ जाता है। और आज के दिन शनिदेव की विशेष पूजा आराधना का विधान बना हुआ है।
0: जनगणना सन 2027 के संबंध में खास बात यह है कि आज से शुरू हो रहा है घर घर सर्वे और स्वगणना का सत्यापन कार्य। जनगणना के प्रथम चरण में ऑनलाइन स्वगणना करने के लिए 15 मई अंतिम तिथि थी। 1 मई से 15 मई तक डिजिटल ऑनलाइन स्वगणना शुरू की गई थी और अब 16 मई से 14 जून तक सर्वे किया जाएगा।

0: घर घर आपके सर्वे करने वाले आएंगे, आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं और अगर आपको कोई शंका हो तो आप उनका आई कार्ड भी देख सकते हैं।
1: और दोस्तों, आज अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत रखने का विधान भी है। ये व्रत मुख्य रूप से सुहागन महिलाएं रखती हैं अपने पति की लंबी आयु, स्वस्थ और सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए। ये व्रत कहा यह जाता है कि पति की अकाल मृत्यु को टालने और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए होती है। और आज के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखकर अपने सौभाग्य की कामना करती हैं।

0: और अब इस मकाम पर कर देते हैं काम की बात।
1: जी हाँ, काम की बात में आज बात लिस्ट, लिमिट और लोकल की, जिंदगी की इनविजिबल समझदारी है ना, उस पर बात करेंगे।
0: हम सब स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और बनते भी हैं, और असली स्मार्टनेस जो है वो इनविजिबल होती है, और ये इसका असर पूरा दिखता है जिंदगी पर जब हम अपने जीवन में इसे शामिल करते हैं। तो पहला है लिस्ट, और हम सभी जानते हैं लिस्ट सिर्फ हम ये बनाते हैं कि क्या खरीदना है, जबकि हमें बनानी चाहिए क्या नहीं खरीदना है। इसकी लिस्ट बनाओ कि क्या नहीं खरीदना है, नो बाय लिस्ट। इसका असर महीने के आखिर में दिखेगा।
1: जी हाँ, और दूसरी बात हमने कही थी लिमिट की। लिमिट का मतलब होता है हर चीज़ की एक हद तय करना, वो भी पहले से। जैसे मोबाइल ले लीजिए, सबसे पहले तो सब कहते हैं कि समय बर्बाद होता है, पर हल क्या है? लिमिट। दिन में सोशल मीडिया कितने मिनट हो, इसकी लिमिट आप रख सकते हैं। फ्रिज खोले तो कितने सेकंड की लिमिट रहे, ये भी आप रख सकते हैं। बिना लिमिट के हमारा दिमाग थोड़ा और के जाल में फंस जाता है, और फिर लिमिट अनलिमिटेड हो जाती है।
0: और तीसरा है लोकल। लोकल एक सोच है, इसका मतलब है जो तुम्हारे 5 किलो

0: मीटर के रेडियस में है उसे पहले चुनो, चाहे वो सब्जी खरीदना हो, मदद हो, दोस्ती हो या काम हो। लोकल मौसमी सब्जी सस्ती, ताजा और कम केमिकल वाली होती है। लोकल कारीगर से काम कराओगे तो पैसा आपके पॉकेट में बचेगा, और लोकल दोस्त अगर आप रखोगे तो दुख के समय वो सबसे पहले आपके दरवाजे पर होंगे।
1: जी हाँ, पास किवाड़ किनारा ना रखें, चलिए बढ़ते चले जाइए आगे लहरों के साथ साथ। काम की बात हमने आपसे की है, याद रखिएगा लिस्ट, लिमिट और लोकल।

0: ये जो इनविजिबल समझदारी है और ये काम की बात है, अगर इसे हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो ये हमेशा तो नहीं पता चलेगा कि हमें कितना लाभ हुआ, लेकिन महीने के आखिर में जो 2000 रुपए बचेंगे ना, वो आंखों को ठंडक देंगे
1: जी। और देखिए क्या है ना कि जब भी बाजार जाते हैं तो सखी सहेली जब मिलकर जाती हैं तो चलें बाजार, तो हाँ चलें, क्या लेना है देखते हैं वहां जाकर
0: जो समझ में आएगा ले लेंगे तो, और आपने ये लिया तो मैं भी ये ले लेती
1: हाँ
0: हूँ।
1: ऐसे में बहुत सारी चीजें हम खरीद लेते हैं वो हमें नहीं खरीदनी है, बस ये कि बाजार जाकर देखें कि भाई क्या क्या
0: कितना और
1: खरीदना
0: क्या
1: है।
0: जरूरी है।
1: वैसे एक चीज और भी है कि जिंदगी में हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। जी हाँ श्रोताओं, राज की बात है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आपकी नजर ये गीत करते हैं।

0: भाई मैं तो बहुत सारी चीजें खरीद कर लेकर आ गई हूँ, बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आई हूँ, अनार के दाने लेकर आई हूँ। हाँ अनार लेकर आई थी, दाने निकाल लिए हैं। बादाम भी लेकर आ गई हूँ, केला भी ले आई हूँ, काजू भी ले आई हूँ, और सेब भी ले आई हूँ, अंगूर के दाने भी ले आई हूँ। अब मैं इसका क्या करूँ, कभी तभी इसका क्या
1: इतनी
0: करूँ।
1: सारी चीजें ले आई हो तो आज सैटरडे रेसिपी बनाते हैं
0: चलो
1: ना।
0: इसका कुछ
1: तो
0: बनाते हैं।
1: गर्मी का मौसम है, बिना कस्टर्ड के ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड बनाते हैं। और जैसा कि अभी गुलनाज ने बताया, उसके लिए एक आम, एक केला, एक छोटे साइज का सेब, कुछ अंगूर के दाने, थोड़े से अनार के दाने, एक कप गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध और एक कटोरी मखाने, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता जो आप लाई हैं,
0: जी जी
1: थोड़ा
0: जी
1: सा
0: ये
1: मुझे दे
0: लीजिए, सब लीजिए
1: दीजिए।
0: सब लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े भी काट दिए मैंने।
1: अरे वाह क्या बात है, ये तो काम आसान हो गया। यानी इन सारे फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए, फिर आप एक बोल लीजिए, उसमें कटे हुए फ्रूट को एक साथ रख लीजिए, और फिर जो आपने एक कप ठंडा दूध लिया है उसमें मखाने डालिए, आधा आम का गूदा उसी में डाल दीजिए, और एक स्मूदी सी तैयार कर दीजिए, और इस स्मूदी को आप कटे हुए फ्रूट में डाल दीजिए, और फिर ऊपर से

0: ये जो आपने अनार के दाने, काजू, बादाम, पिस्ता सब जो सरकाए हैं ना काट के, उसे सजा दीजिए, फ्रिज में ठंडा कीजिए और फिर ठंडा ठंडा सर्व कीजिए।
1: जी, और पड़ोसी से मांगकर खजूर भी लेकर आई थी उसका क्या करना है
0: खजूर लाई थी तो उसे दूध में मिलाकर ब्लेंड कर ले,
1: अच्छा उसके भी
0: तो
1: डाल
0: उससे
1: दूं ना।
0: मिठास बढ़ जाएगी और ये बिना शुगर का कस्टर्ड बन जाएगा जो हेल्दी भी है।
1: जी हाय, मैं तो कितनी थक गई, कितना काम मैंने किया है
0: चलिए तो अब मिलकर लुत्फ उठाते हैं
1: गाने का।

0: तन्हाई में अक्सर वे लोग याद आ जाते हैं जो समाज को बहुत कुछ दे कर जाते हैं, और अपने भी याद आ जाते हैं तन्हाई में। और यादों की कड़ी में एक नाम याद आ रहा है, मंगेश डबराल जी का। हिंदी की आधुनिक कविता के सम्माननीय और शीर्ष रचनाकारों में से एक रहे हैं। उन्होंने हिंदी कविता को नए अनुभवों से संपन्न किया। पहाड़ पर लालटेन उनका पहला संग्रह था, और उसके बाद में उनका सबसे नया संग्रह जो सन 2013 में प्रकाशित हुआ, नए युग में शत्रु, आज जयंती के अवसर पर उन्हें याद कर रहे हैं।
1: और यही याद आता है एक और नाम, करमशी जेठाभाई सुमैया। शिक्षा के क्षेत्र में इनके विशेष योगदान के कारण इन्हें याद किया जाता है, और महाराष्ट्र में कई शैक्षिक संस्थानों की स्थापना आपने की। समाज के लिए उनकी सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।
0: और श्रोताओं, यादों की कड़ी में गुलशेर शानी के नाम से साहित्य जगत में भला कौन अनजान है। शानी क्या थे, उनका लेखन कैसा था, ये उनके पढ़ने वाले हर पाठक को बखूबी पता है। 16 मई 1933 को मध्य प्रदेश के जगदलपुर में पैदा हुए शानी ने 10 फरवरी 1995 को इस फानी दुनिया से विदा ली। इस बीच अपनी शख्सियत से, अपनी कहानियों, उपन्यास, संस्मरण और निबंध से साहित्य जगत को समृद्ध करते चले गए। आज जयंती के अवसर पर हम गुलशेर शानी जी को याद कर रहे हैं।
1: और हम याद कर रहे हैं गोपाल चंद्र प्रहराज को। ये प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक गिने जाते हैं, और उड़िया भाषा के ये साहित्यकार हैं, भाषाविद हैं। इनकी भाषा ज्ञान बड़ी सरल भाषा है, और गंभीर विचार युक्त लेखन इनका रहता है। इन्हें प्रसिद्धि मिली उड़िया भाषा कोश के कारण। बड़े आकार के 1500 पृष्ठों के साथ खंडों में प्रकाशित ये कोश 1,84,000 शब्दों से सजा हुआ है।
0: इसी कड़ी में याद कर रहे हैं रूसी मोदी जी को। एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति रहे जिनका पूरा नाम रुस्तम जी होर्मुज जी मोदी था। उनके नेतृत्व में औद्योगिक इकाई ने मील के पत्थर हासिल किए और भारतीय इस्पात उद्योग में एक मानक स्थापित किया, और इसके लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, यादों की कड़ी में वो याद आता है, लोंगेवाल का युद्ध भारतीय सेना के साहस, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक रहा है। 1971 के युद्ध को तकरीबन 55 साल होने को हैं, और इस युद्ध के महानायकों में से एक कर्नल धर्मवीर सिंह को आज हम याद कर रहे हैं।

भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों में से एक थे और 1971 में लोंगेवाल की लड़ाई में पाकिस्तान पर भारत की जीत में उनकी अहम भूमिका थी और इस पर एक फिल्म भी बनी थी 1997 में। फिल्म का नाम था बॉर्डर और इसमें जो अभिनेता थे अक्षय खन्ना, उन्होंने कर्नल धर्मवीर की भूमिका निभाई थी।

0: मोहब्बत तो हो है और हमेशा रहेगी, है
1: जी
0: ना,
1: हो
0: हमारे
1: गई है
0: श्रोताओं
1: मोहब्बत। चलिए
0: मोहब्बत
1: इसी
0: समय से।
1: मोहब्बत को अब थोड़ा सा विराम देते हैं और श्रोताओं से अनुमति लेते हैं, कल फिर नमस्कार कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे। तब तक के लिए गुलनाज खान
0: और
1: और
0: कविता को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

श्रोता अभी सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम। नमस्कार। मीडियम व्यू 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

कोहिनूर लंगा और साथियों को अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी जोधपुर से लोक संगीत के कार्यक्रम की इस अंक की आखिरी रचना दुर्गादान रावल की आवाज़ में।

इसके साथ ही लोक संगीत का यह अंक यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में प्रस्तुत है ये ठुमरी, जिसे गाया है शोभा जोशी ने।

पंडित भीमसेन जोशी को अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। अगली आवाज परवीन सुल्ताना की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुबह के 11 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज करते हैं हम फिल्म उमराव जान के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने, बोल लिखे हैं शहरयार ने और कंपोज किया है खयाम ने।

आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म सत्ते पे सत्ता से। आशा भोसले और दिलराज कौर की आवाजों में बोल हैं गुलशन बावरा के और संगीत है आर डी बर्मन का।

आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म साथ साथ से जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में, बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत है कुलदीप सिंह का।

फिल्म संगीत में अगली पेशकश है फिल्म सिलसिला से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, बोल है जावेद अख्तर के और संगीत है शिव हरी का।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आइए अगला गीत सुनते हैं, फिल्म बेमिसाल से लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की आवाजों में। बोल है आनंद बख्शी के और संगीत है RD बर्मन का।

फिल्म संगीत में अगली पेशकश है फिल्म सागर से। किशोर कुमार की आवाज़ में आइए ये गीत सुनते हैं, जिसमें बोल दिए हैं जावेद अख्तर ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

आइए अब सुनते हैं अगला गीत, फिल्म नूरी से लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की युगल आवाज़ों में, बोल हैं जान निसार अख्तर के और संगीत है खयाम का।

लीजिए, अगला नगमा पेश है फिल्म मौसम से लता मंगेशकर और भूपेंद्र की युगल आवाज़ों में। बोल हैं गुलजार के और संगीत है मदन मोहन का।

लीजिए अगला गीत सुनते हैं फिल्म घर से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में, बोल हैं गुलजार के और संगीत है आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दोपहर की 12 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं शमशुद्दीन की आवाज में ये लोक रचना।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी चंपा मेथी पार्टी की आवाज़ में ये लोक रचना। इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 12:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में पहली पेशकश है पंकज उदास की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल। आइए अगली गज़ल सुनते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे। विभिन्न आयु वर्ग, क्षेत्रों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय समुदाय के सदस्य पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी समुदाय की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल कर रहे हैं। उधर झुंझुनू में आज विधायक राजेंद्र भांबू ने जनगणना टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री भांबू ने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का काम है। पहले चरण की जनगणना का मूल निवास से कोई संबंध नहीं है। जहां लोग वर्तमान में रह रहे हैं उन्हें वहीं पर जनगणना में शामिल होना चाहिए। उन्होंने लोगों से प्रगणकों का सहयोग करने की अपील की। इस बीच प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वगणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों ने खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से इस बीमारी की रोकथाम के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जागरूकता बढ़ाना और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण और चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूती से जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्वच्छता, सतर्कता और समय पर इलाज को डेंगू से बचाव के प्रभावी उपाय बताया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वस्थ और स्वच्छ राजस्थान के निर्माण में सहभागिता निभाने का आग्रह किया है। हनुमानगढ़ जिले के खेतों में फिर से सफेद सोना यानी नरमा की फसल लहलहाएगी। कृषि विभाग ने सीजन के लिए 1,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नरमा बुवाई का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 65,000 हेक्टेयर अधिक है। पिछली बार गुलाबी सूंडी कीट के प्रकोप से फसल को हुए नुकसान को देखते हुए इस बार प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत 19 प्रमाणित कंपनियों के बीटी कॉटन बीजों को ही मान्यता दी गई है। और अब मौसम। राज्य में अगले 1-2 दिनों में गर्मी दोबारा से प्रचंड रूप ले सकती है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। इससे हीट वेव का असर फिर देखने को मिल सकता है। वहीं पिछले 2-3 दिनों से कई स्थानों पर जारी आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। कई शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ, जो सामान्य से कम है। हालांकि उमस और गर्मी का असर बना हुआ है। उधर फलौदी और चित्तौड़गढ़ में कल अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार मापा गया। उदयपुर और कोटा में दिनभर गर्म हवाओं का असर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज 6 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट बताया गया है। राजधानी जयपुर में भी बादल छाए रहने और अंधड़ की संभावना है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर 12 जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है। ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। वहीं अनेक महिलाएं वट सावित्री का व्रत कर रही हैं। इस अवसर पर वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं को लेकर एक नोटिस जारी किया है। इसमें सीबीएसई ने कहा है कि अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं होने वाले

0: छात्र छात्राओं को दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का फायदा ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 1:05 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कृषक भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान भैया खेती बाड़ी जी का काम काज है आप कर रहे हैं, साथ साथ पशु धन रो भी आप काम काज करा हाँ। दाव है, बीत है, गाय है, बकरी है, ऊंट है, लड़ी है, सबरी देखभाल आप गर्मिया रे दिनार महीने रखा। तावड़ा हल्ला पड़बा लागा है, हाथे हाथे जी की गर्म हवा है अभी चल रही है। आज आपने जानकारी देवा के भाई इन महीने रे महीने आप खेती बाड़ी रे साथ साथ सब्जियां है, बागवानी है, पशुपालन है, इन महीने कई कई काम काज आप कर सका। किसान भैया फसला रमाइने जीव आप बात करा कपास की अमेरिकन किस्म है उन रमाइने 75 किलो नत्रजन और 35 किलो फास्फेट, देसी किस्म रमाइने 50 किलो नत्रजन और 25 किलो फास्फेट, साथ संकर किस्म रमाइने 120 किलो नत्रजन और 40 से 50 किलो फास्फेट प्रति हेक्टर देवनो चाहिए। पोटास उर्वरक मिट्टी परीक्षण आधार माते आपने देवनो चाहिए। फास्फेट और पोटास की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा बुआई रहे टेम बीज नीचे उड़ा आप और नत्रजन जिकी बचोड़ी आदि मात्रा है उनने दो धान बराबर भागा रमाइने कलिया और डोडा बने उन वक्त आपने देवनी चाहिए। जिन मिट्टिया रमाइने मृदा रमाइने सल्फर पोटास और जिंक क्रांतिक स्तर नीचे वे तो उठे इन उर्वरकों रो समायोजन करने से आर्थिक लाभ रो जिको स्तर है वो बढ़ जाया करे। 2% म्यूरेट ऑफ पोटास रो छिड़काव डोडा बनने जिकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जा और हल्ला हल्ला डोडा बनती टाइम अपने कपास री उपज और रेसा री गुणवत्ता बढ़ाने में बहुत लाभदायक रिया करे। इंड साथे जाहिद मूंगरी फलिया में भी दाना बने हमारे बगत में तो टेमो टेम किसान भाई सिंचाई देवे फलिया चटकनो पहला तोड़े अपने कर लेनी चाहिए। बागवानी महीने किसान भाई पर बात करा पपीतारी जी की नर्सरी है वह तैयार करने वास्ते जिकी किस्म है हनीड्यू कुर्ग हनीड्यू पुसा डिलीशियस पुसा नन्ना अरका सूर्या और सीओ 2 मुकिनी किस्म रो किसान भाई चयन करे और पपीतारी पोत तैयार करने वास्ते बढ़िया जुताई कर परा और खाद डाल परा खेत रमने ऊंची उठड़ी जिकी क्यारियां है तैयार किसान भाई ने करनी चाहिए। बिजोरी जी की क्षेत्र है वह 2 सेंटीमीटर दूरी और 10 सेंटीमीटर की कतार बना परा और लंग टंगे 1.5 सेंटीमीटर गहरी बुआई करनी चाहिए। आमरा पेड़ भी लागू रहे तो उठे सूक्ष्म पोषक तत्व जीव जस्तो है उनकी पूर्ति वास्ते जिंक सल्फेट 0.3% 3 ग्राम प्रति लीटर पानी रो छिड़काव करना चाहिए, साथ 10 से 15 दिन क्षेत्र माते पौधार महीने सिंचाई करनी चाहिए। सब्जी की बात करना किसान भाइया तो मिर्ची की खेती वास्ते किस्म जो पुसा ज्वाला RCH1 मथानिया लौंग पंत C1 और 2 G5 पुसा सदाबार GH1 और 3 अरका श्वेता और जवार 218 चरपरी मसाला रे वास्ते बढ़िया और शिमला मिर्ची की बात करा येलो वंडर कैलिफोर्निया वंडर पुसा दीप्ति अरका गौरव अरका बसंत और अरका मोहिनी कोई एक किस्म रो चयन करा आप और 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई वास्ते 1 से 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होया करे। बीजरी बुआई पहला 2 ग्राम कैप्टोन 50% WP प्रति किलो बीज की दर उपचारित अपने करनो चाहिए। नर्सरी महीने कार्बोफ्यूरोन 3G कण 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर दर से भूमि महीने मिलावना चाहिए। हमें बात करा किसान भाया के खेती बाड़ी रे साथ है आप पशुपालन नो काम काज भी करा पशुआ ने लू आपने बचाव चाहिए। पशुआ ने पानी में ग्लूकोज और नमक और शक्कर घोल पिलावनो चाहिए। लू लाग जा तो पशु ने ठंडे स्थान माते बांधनो और माथा माते बर्फ और ठंडे पानी की पट्टियां करनी चाहिए और पशु चिकित्सक को अपने संपर्क राख और उपचार अपने करावना चाहिए। पशुआ रे महीने गलगुंटू रोग बचाव रे वास्ते टीको लगा सका। इन साथ साथ दुधारू पशुओं की जीव आप बात करा उनर महीने थनेला रोग रो बचाव भी अपन करना बहुत जरूरी। किसान भैया आ ही जानकारी के इन महीने रे महीने आप खेती बाड़ी रे साथ साथ पशुपालन रा किसा किसा काम काज आप कर सका। कृषि जगत कार्यक्रम रो भगत पूर्व वेरियो है दिनेश राणे जाने से गिराओ राम राम।

अभी कृषक भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर सूर्य नगरी चैनल एवं एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम सनसिटी चैनल। दोपहर के ठीक 1:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: बिल्कुल, इंतज़ार आपका हुआ है ख़त्म। हाजिर है आपकी पसंद का कार्यक्रम लेकर नारी वाटिका। सुनने वाली सभी सखी सहेलियों को आपकी रेडियो सखी आशा अडवाणी और
1: वंदना शर्मा का प्यार
0: प्यार
1: भरा
0: भरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की परिकल्पना और संपादन है सफलता चारण का। तो वंदना, आज के इस खूबसूरत सफर में हम महसूस करेंगे इंतजार के उन अनकहे जज्बातों को, जो कभी मुस्कान बनते हैं तो कभी यादों की हल्की सी दस्तक।
1: इंतजार कभी आंखों को नम कर जाता है, कभी सपनों को और सुंदर बनाता है, पर सच तो यही है, इस दुनिया में इंतजार ही उम्मीद को जिंदा रखता है।
0: लेकिन इंतजार की राहें बड़ी लंबी होती है, जो कांटे नहीं कटती। साल गुजर जाते हैं मगर महीने नहीं, महीने गुजर जाते हैं मगर दिन नहीं।
1: दिन गुजर जाते हैं, मगर वो एक एक पल, वो एक एक लम्हा मानो समय की हथेली पर ठहर गया हो।
0: और वंदना, देखो, इंतजार सिर्फ समय का गुजरना नहीं होता, इंतजार तो भावनाओं का वो सफर होता है। जब कोई अपना दूर चला जाता है तो घड़ी की टिक टिक भी बहुत ही मन को भारी लगने लगती है। रातें लंबी हो जाती है और खिड़की पर टकटकी लगाए ये मन बस ढूंढता रहता है किसी को।
1: आशा, कितना अजीब है ना, जब हम खुश होते हैं तो समय पंख लगा कर उड़ जाता है, लेकिन जब हम किसी का इंतजार होता है तो वही समय कदम कदम पर ठहर जाता है। कभी आपने महसूस किया है कि इंतजार में इंसान छोटी छोटी बातों से भी जुड़ जाता है? मोबाइल की हर घंटी पर लगता है शायद कोई फोन, होगा कोई दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा होगा। हर आहट पर लगता है कि समय है जो गुजरते पल के साथ खत्म होगा या नहीं होगा, ये इंतजार।
0: और गुजरते वक्त के साथ ये पल तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो समा प्यार का हमारे दिलों में हमेशा गूंजता रहता है।

0: हम बात कर रहे हैं इंतज़ार की आज के कार्यक्रम में, और जीवन और इंतज़ार दोनों साथ साथ चलते हैं। और अगर हम कहें कि जो जीवन का दूसरा नाम इंतज़ार है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और प्रेम की बात करें तो प्रेम में इंतज़ार की मिठास बिल्कुल अलग होती है। वास्तव में वंदना, इंतज़ार में कोई बेहतर, अगर इंतज़ार को कोई बेहतर समझ सकता है ना, तो वो है प्रेम। प्रेम में इंतज़ार का एक अलग ही सुकून होता है। ये इंतज़ार प्रेम को और गहरा बना देता है, और इसी प्रेम के इंतज़ार में विश्वास की भी परख होती है। इंतज़ार की फीलिंग को हम शब्द तो नहीं दे सकते, बस दिलो दिमाग में एक ही जुनून छाया रहता है, कब इंतज़ार खत्म होगा। इंतज़ार में थोड़ी खुशी और थोड़ी थोड़ी बेचैनी भी होती है।
1: आशा, इंतज़ार एक ऐसा शब्द है जिसमें बेचैनी भी है और एक अजीब सा सुकून भी। और जब बात प्रेयसी के इंतज़ार की हो तो वो घड़ी की हर टिक टिक दिल की धड़कन बन जाती है। प्रेम में इंतज़ार केवल समय का गुजरना नहीं है, बल्कि यह तो उस एहसास की इबादत है जो हमें किसी खास से जोड़े रखता है।
0: और जिस शख्स का इंतज़ार होता है, जैसे वो आसपास ही महसूस होता है परछाई की तरह। हम उन घड़ियों को, उन पलों को इंतज़ार में ही जी लेते हैं जो शायद हकीकत में कभी होगी ही नहीं। और इंतज़ार चाहे किसी का भी हो, एक बात तो है, इस इंतज़ार में रातें लंबी हो जाती है, नींद उड़ जाती है, चैन खो जाता है। और सच कहें तो ये इंतज़ार जिंदगी, ये जो इंतज़ार होता है जब रात गुजरती है चांद को देखते देखते, तो किस तरह से वो भी काली स्याही रात काट लेता है, और उस चांद के साथ साथ हम भी वो रात काट लेते हैं।
1: बिल्कुल, कहते हैं कि मिलन से ज़्यादा कहीं ज़्यादा खूबसूरत इंतज़ार की वो घड़ियाँ होती हैं जिनमें हम अपनी पसंद के उस शख्स की यादों को बुनते हैं। खिड़की के पास बैठकर राहों को देखना, मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार नज़रें टिकाना और हर आहट पर ये सोचना कि शायद वो आ गया। इस इंतज़ार में जो तड़प होती है वही तो प्रेम का को और गहरा बनाती है। आशा, प्रेम में इंतज़ार करना असल में खुद को खोकर किसी और को पाने की तैयारी होती है।
0: और महान शायर और कवि बशीर बद्र साहब ने कहा भी है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और प्रेम की इस प्रतीक्षा पर अहमद फराज की जो पंक्तियां हैं वो क्या कहती है।
1: वो कहती हैं कि आंखों से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। तुम मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर सुकून बहुत है तुम्हें इंतजार में पाकर।

0: वंदना, प्रेम में बहुत मिठास होती है। जब इंतज़ार ख़त्म होता है तो प्रेमी को पाकर मन हर्षित हो जाता है, लेकिन एक तरफा प्यार और इंतज़ार, ये बिल्कुल अलग इसकी फीलिंग होती है। कभी कभी, क्योंकि जब इंतज़ार एक तरफा होता है तो प्रेम भी एक तरफा होता है, जहाँ मन किसी को अपना मान लेता है लेकिन दूसरी तरफ प्रेम से अनजान व्यक्ति को उस प्रेम का आभास भी नहीं होता है। इस इंतज़ार में शिकायतें कम होती है क्योंकि उम्मीदें भी कम होती है, क्योंकि एक तरफा प्यार है तो कोई उम्मीद ही नहीं है। पर एक बात इसमें होती है और वो है दुआएं। और जब ऐसा प्यार जब दुआओं का रूप बन जाता है तो ऐसी कहानियां भले ही अधूरी रह जाती है, मगर वो अमर कहानियां बन के हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहती है।
1: बिल्कुल आशा, क्योंकि इंतज़ार प्रेम की वो कसौटी है जहाँ दूरियाँ हार जाती हैं और विश्वास जो होता है वो जीत जाता है। जब आप किसी का इंतज़ार करते हैं तो आप उसे सिर्फ समय नहीं दे रहे होते, बल्कि आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा दे रहे होते हैं जो कभी लौट कर नहीं आएगा। और आपने बात की एक तरफा प्रेम की, तो यह एक तरफा प्रेम जो है वो इंतज़ार ही तो है जो मिलन की उस पहली मुस्कुराहट को अनमोल बना देता है जो कभी आने वाली ही नहीं है।
0: और हर इंतज़ार की मंजिल इंतज़ार का ख़त्म होना नहीं होता। कभी कभी इसकी मंजिल ना होने के बावजूद इसमें अनोखी खुशी होती है, एक अलग सा सुकून होता है।
1: क्योंकि आशा इसमें इजहार तो होता नहीं, तो चुपचाप से दिल में दबी फीलिंग्स, खामोशी पढ़ना और खामोशी जो होती है वो समझना हमें सिखा देता है। ये कला जब आ जाती है तो उसे प्यार का इजहार, इंतज़ार का जो मज़ा होता है ना, वो अलग ही होता है।
0: बिल्कुल, एक तरफा जो प्यार होता है उसका इंतज़ार हमारी और आपकी सोच को बहुत ही गहरा बना देता है, हमारी भावनाओं को परिपक्व बना।

है। तो अगर आप भी आज किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो उस इंतज़ार से शिकायत मत कीजिए, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि हर लंबी प्रतीक्षा के बाद जब दीदार होता है तो वो लम्हा सदियों की थकान मिटा देता है। तो इंतज़ार करते रहिए, मोहब्बत करते रहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो वक्त की धूल में भी धुंधला ना पड़े।

0: सखियों ना जाने किसका इंतज़ार, इंतज़ार तो बहुत ही खूबसूरत होता है और हमें किसी ना किसी का इंतज़ार होता है। हमने बात की इंतज़ार की, तो आशा जो सैनिक की पत्नियां होती हैं ना, उनको भी एक अलग ही इंतज़ार होता है। वो जो इंतज़ार होता है वो सिर्फ समय का गुजरना नहीं होता, वो भावनाओं का सफ़र होता है जिसमें दिल जुड़ा होता है। हर शाम पर जो अपने पति के घर लौटने का इंतज़ार होता है, लेकिन जो सरहद पर जिसका पति तैनात हो उस प्रेयसी, उस पत्नी का एहसास ही अलग होता है, क्योंकि उसमें प्यार भी होता है और गर्व भी, और हर पल छिपी हुई चिंता भी।
1: हाँ जी, हर दिन उस सैनिक की पत्नी की, या जो जिस रूप में भी हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, एयरफोर्स है, नेवी है ना, और
0: जी
1: जो आर्मी है, तो किसी भी वो पोस्ट पर है, तो उसकी पत्नी का जो वो एहसास होता है वो अलग होता है। हर दिन उसकी शुरुआत जब होती है तो वो मंदिर के आगे दिया जलाती है, एक ही प्रार्थना उसकी ज़बान पर होती है, लंबी हो उम्र यही दुआ है, देश की सेवा करते रहें, सरहदों पर सेवा करते रहें।
0: बिल्कुल। और जो ये जो होती है ना पत्नियाँ, सैनिक की जो पत्नियाँ होती हैं, ये एक इनकी एक अलग ही छवि होती है, क्योंकि इनके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियाँ होती है, और इतनी सारी परेशानियाँ और जिम्मेदारियाँ होने के बावजूद भी इनके चेहरे पर शिकायत नहीं रहती, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को एक अलग मायने से जीती हैं। वो उस परेशानी में भी गर्व महसूस करती हैं, और कभी भी अपने पति को, जो सोल्जर जो वहाँ पे तैनात है सीमा पर, उसे कभी नहीं बताती कि मुझे क्या परेशानी है, मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। हमेशा एक ही जवाब देती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सही हूँ, जिससे जो सोल्जर होता है वो अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी शिद्दत से कर सके।
1: हम सब कहते हैं कि सीमा पर तैनात एक सोल्जर लड़ता है, लेकिन कोई यह नहीं जानता, कोई यह नहीं देखता कि एक पत्नी भी घर पर लड़ रही होती है। माँ को भी डर, माँ के अंदर भी एक डर होता है, क्योंकि सेना पर जो मतलब सरहद पर जो जवान लड़ता है, तो माँ के मन में भी एक डर होता है, कहीं से
0: जी
1: कुछ भी खबर आ सकती है। और साथ साथ वो लड़ती है दोनों, अकेलेपन से, डर से, अनगिनत रातों, जब रातें कटती नहीं और कोई खबर ऐसी, कोई फ़ोन ऐसा दिल की धड़कने बना देता है, तो बहुत सारी समस्याएं होती है। तो उन
0: बिल्कुल
1: पत्नियों को ये सिखाया भी जाता है कि किसी तरह की भी घर में परेशानी हो, लेकिन जो बॉर्डर पर तैनात है उन सैनिकों को ये सारी बातें ना बताई
0: जी
1: जाए, क्योंकि घर की टेंशन से वो दूर होंगे, तभी तो वो बेफिक्री से देश की सेवा कर पाएंगे। और जब सरहद पार से फोन आता है कभी, और ये संदेश आता है कि अगले महीने मैं छुट्टी पे आने वाला हूँ 1 महीने की, तो उस पल में महीनों का इंतजार खुशी बनकर आंखों में उतर जाता है। और सोल्जर की पत्नी की तो दिवाली भी वही होती है और होली भी वहीं से शुरू हो जाती है। क्या करूं, घर सजाऊं, दिए जलाऊं, मिठाइयां बनाऊं, और ना जाने कितने कितने ख्वाब वो देखती है, और उन ख्वाबों को वो हकीकत में होता हुआ इंतजार के बाद देखना चाहती है।

0: है बहार की।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इंतजार, आशा इंतजार का एक रूप वो भी होता है जिसमें कोई शिकायत नहीं होती, बस एक खामोश सी दुआ होती है। हम अक्सर उन सपनों की बात करते हैं जो सात समंदर पार पूरे होते हैं, लेकिन आशा उन आँखों का क्या जो उन सपनों को विदा करने के बाद दरवाजे पर ही टिकी रह जाती है?
4: बिल्कुल, आप बात कर रहे हो उन माँ बाप का जो पढ़ा लिखा कर बच्चों को बाहर भेज देते हैं जॉब के लिए, और जब बच्चे अपने पंख फैलाकर सुनहरे भविष्य की तलाश में परदेश चले जाते हैं तो पीछे छूट जाते हैं बूढ़े माँ बाप, और उनके हिस्से में आता है एक सन्नाटा। घर की अब उनकी जो दीवारें हैं घर की, अब बच्चों की आवाज़ों से नहीं बल्कि उनकी यादों की जो गूंज है वही घर में गूंजती है। वो जो माँ बाप होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी बच्चों को सही राह में लाने के लिए, अब अपनी बाकी उम्र बस बच्चों के इंतज़ार में ही गुजरती रहती है।
3: एक अजीब सी टीस होती है उनके मन में, कि एक अंदर एक समंदर सा होता है दुख का, कि काश कोई पास होता जो दवा का वक्त याद दिला देता या बस साथ बैठकर चाय पी लेता। लेकिन जब वीडियो कॉल की घंटी बजती है ना तो वे अपनी सारी पीड़ा अपनी झोरियों वाली मुस्कान के पीछे छिपा देते हैं, और वे कभी नहीं कहते कि बेटा घर कब लौट कर आओगे, वे बस यही कहते हैं हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं, तुम अपना ख्याल रखना।
4: ये तो दर्द आज के समय का तो सबसे बड़ा दर्द है, ये पीड़ा तो आज के समय की सबसे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि एक तरफ अगर बच्चों को घर में बिठा लिया जाए इतनी बड़ी बड़ी एजुकेशन देने के बाद तो वो भी माँ बाप को अखरता है, और बच्चे बाहर चले जाते हैं तो सन्नाटा उनके हिस्से में आता है। तो कहा भी है कि चलती फिरती हुई आँखों से अजा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है, और इस एकाकीपन और इंतज़ार पर ये पंक्तियाँ भी बहुत गहरी चोट करती है कि बूढ़े माँ बाप की आँखों में झांक कर देखो वहाँ एक घर बना है जिसमें कोई रहता नहीं।
3: यह इंतज़ार की दुनिया का सबसे कठिन इंतज़ार है, क्योंकि यहाँ माँ बाप को पता होता है कि परिंदा अब अपना घोंसला कहीं और बना चुका है, फिर भी हर आहट पर दिल धड़कता है कि शायद इस बार दरवाजे पर वो अजनबी नहीं कोई अपना होगा। वे अपनी खुशियाँ अपने बच्चों की कामयाबी में ढूंढ लेते हैं और अपने अकेलेपन को पवित्र बलिदान का नाम दे देते हैं।
4: तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने घर से दूर हैं तो याद रखिएगा कि किसी पुराने घर की खिड़की आज भी आपकी राह देख रही है, आपके एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रही है, और उस चेहरे की जो मुस्कान है वही असली सुकून देगी आपको। तो जब भी समय मिले एक फ़ोन घुमा दिया कीजिए, और वीडियो कॉल करके अपने बूढ़े माँ बाप का हाल

0: इंतज़ार हम सभी को होता है और हम देखते हैं कि भूखे को रोटी का, प्यासे को पानी का और मायूस दिल को प्यार का इंतज़ार रहता है। घोंसले में नन्ही नन्हे चिड़िया के बच्चे हैं जो उड़ नहीं सकते। माँ गई है दाना लाने। उन चूज़ों को माँ का इंतज़ार, दानों का इंतज़ार कि माँ आएगी अपनी चोंच से हमें दाना चुगाएगी।
1: आशा, कभी सोचा है आपने कि जो इंतज़ार होता है वो बिना धैर्य के नहीं किया जा सकता, और बिना धैर्य के किया गया इंतज़ार किसी सज़ा से कम नहीं होता। जहाँ इंसान हर पल झुंझलाता है, परेशान होता है, लेकिन जब उसी इंतज़ार के साथ धैर्य जुड़ जाता है तो वह एक साधना बन जाता है। धैर्य हमें सिखाता है कि जो चीज़ हमारे हक की है वो सही वक्त आने पर हमें ज़रूर मिलेगी, बस हमें उस वक्त के आने तक खुद को बिखरने नहीं देना है।
0: और वंदना, एक बात तो है, इंतज़ार और धैर्य का गहरा और अटूट संबंध है। धैर्य का मतलब सिर्फ खाली बैठ के इंतज़ार करना नहीं है, बल्कि उन मुश्किलों जो वो जो मुश्किल पल होते हैं उसमें अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना, शांति से काम लेना। तो इंतज़ार यानी खुद को संभालना है और खुद को उस समय तक कंट्रोल करना है कि तुम्हारा वक्त अभी नहीं है, अभी तुम्हारे पास सिर्फ इंतज़ार है, और उस इंतज़ार में प्रयास भी हो, प्लानिंग भी हो और विश्वास भी हो।
1: इसीलिए किसी ने कहा भी है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। कबीर साहब ने कितनी सादगी से ये कहा है कि माली चाहे कितने एक ही दिन में 100 घड़े पानी पेड़ में डाल दे, लेकिन फल तो तभी आएगा जब उसका सही मौसम, सही वक्त आएगा। यही इंतज़ार और धैर्य का असली संबंध।

0: जीवन में हर पल इंतज़ार रहे, हर रात को सुबह का इंतज़ार रहता है और सुबह को शाम का इंतज़ार। हर कोई उम्मीदों से भरा है और उसी उम्मीद को पूरा होने का इंतज़ार कर रहा है।
1: आशा इंतज़ार की भट्टी में जो धैर्य है वो एक तरह का तप है। अक्सर हम इंतज़ार को मजबूरी मान लेते हैं, एक ऐसी बेबसी जिसमें हमारा वक्त हाथ से फिसलता जाता है। लेकिन ज़रा ठहरिए, इंतज़ार तब तक सिर्फ एक बेचैनी है जब तक उसमें धैर्य यानी सब्र का अमृत ना घुले। इंतज़ार अगर एक रास्ता है तो धैर्य उस रास्ते पर बिना थके बिना डगमगाए चलने का हौसला है।
0: और जहाँ आपने कहा कि इंतज़ार बेबसी है, तो वास्तव में कई बार ऐसी बेबसियाँ हमारे जीवन में शामिल हो जाती है, हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से कोई बीमार है, अस्पतालों में भर्ती है, तो उसको इंतज़ार है, जो बीमारी से जूझ रहा है, कि कब मुझे छुट्टी मिले और घर जाकर चैन से मैं सो जाऊं। और साथ में जो परिजन हैं, उनको
1: जी
0: जो तकलीफ़ें रहती हैं, घर और हॉस्पिटल के बीच में जो चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनको भी यही इंतज़ार रहता है कि ज़िंदगी कहीं इसी इन्हीं बातों में उलझ गई है, और ये चक्कर कब ख़त्म होंगे, ये पीड़ा कब ख़त्म होगी। तो हर चीज़ में इंतज़ार है। बच्चों को जॉब मिलने का भी इंतज़ार, हर चीज़ में इंतज़ार है।
1: बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि सब्र की एक मुकम्मल इबादत है जो वक्त से पहले कभी नहीं खुलती। ज़िंदगी में चाहे किसी परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार हो, किसी नए मोड़ का हो या किसी खास इंसान का, जब आप धैर्य का दामन थाम लेते हैं तो आप

0: समय को काटना बंद कर देते हैं, बल्कि आप उस समय को जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आशा धैर्य जो होता है वो आपको भीतर से मजबूत बनाता है, ताकि जब आपकी प्रतीक्षा खत्म हो और कामयाबी आपके दरवाजे पर आए, तो आप उस कामयाबी को संभालने के काबिल बन सकें।
1: बिल्कुल, जो लोग इंतज़ार करना जानते हैं वे समय की खामोशी में भी उम्मीदों की धड़कनें सुन लेते हैं, क्योंकि इंतज़ार हमें मुस्कुराना सिखा देता है और हमें भीतर से मजबूत भी बनाता है। और हम बहुत कुछ बदलना चाहते हैं मगर बहुत कुछ अपने हाथ में नहीं होता वंदना। उस वक्त हम इंतज़ार करते हैं बदलाव की बयार का, कभी हवाओं का रुख ज़रूर बदलेगा और ये रुख बदलता भी है। तब मन गहरी सांस लेता है और तब मन कहता है कि धैर्य जो है वो सबसे बड़ी हमारी ताकत बन गया है। एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहूँगी
0: जी
1: कि कभी कभी ये भी कहा जाता है कि इंतज़ार ना करो, इंतज़ाम करो, क्योंकि इंतज़ार वक्त ज़ाया करता है। लेकिन इस वक्त को ज़ाया नहीं करके इंतज़ार को इंतज़ाम से अगर जोड़ दिया जाए, यानी प्रयासों में सृजनता लाई जाए, और तो जो हम प्रतीक्षा करते हैं ना उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही खूबसूरत होगा।
0: जी, अगर सखियों, अगर आज आप भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर खड़े होकर किसी चीज़ की राह देख रहे हैं, तो बेचैन मत होइए। अपने इंतज़ार को धैर्य का खूबसूरत लिबास पहनाइए। यकीन मानिए, सब्र के धागे से ये सब जो होता है, सब्र का धागा है, उसे बुन देगा, और सपने जब पूरे होंगे तो उनकी चमक सदियों तक फीकी नहीं पड़ेगी। तो रखिए थोड़ा सा सब्र, मुस्कुराते रहिए और जीते रहिए हर लम्हे को।

0: लेकिन वंदना जलता कुछ भी नहीं है। शाम होते होते जैसे सब कुछ शांत हो जाता है, और ये धरती भी जानती है कि जो भीषण गर्मी से जो तप रही है ना, उसको पता है कि मेरा इंतजार हर बार खत्म होता है और इस बार भी होगा, कि जब बारिश की फुहारें मिट्टी को छूती है तो जैसे वरदान साबित होती है, सूखी जमीन मुस्कुरा उठती है और हर तरफ हरियाली छा जाती है, धरती का श्रृंगार हो जाता है।
1: आशा और जो मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में जब घुल जाती है तो लगता है कि ये कैसा इत्र है जो कहीं धूल में घुलकर हमें सुकून दे रहा है। पेड़ पौधे धुल जाते हैं, चमक जाते हैं और चारों ओर हरियाली की चादर बिछ जाती है। ये मौसम, ये ऋतु का जो ये चक्र है हमें बताते हैं कि इंतज़ार ज़रूरी है। जो धरती तपे नहीं तो पहली फुहार से कैसे हर्षित होगी।
0: बिल्कुल। और एक इंतज़ार वो भी है जो सबसे अलग है। इंतज़ार की एक सूरत वो है कि जब फटी हुई ज़मीन की दरारों में जो छिपी होती है, एक किसान का इंतज़ार जो सिर्फ बादलों से बरसती बूंदों को नहीं बल्कि एक बेहतर कल और अपनी मेहनत के सही मोल का होता है। जब वह तपती धूप में हल चलाता है, कड़कती ठंड में पानी लगाता है, तो उसका हर पसीना मिट्टी में एक उम्मीद जगाता है।
1: किसान का जो इंतज़ार है वो दुनिया के हर इंतज़ार से अलग है। वह इंतज़ार करता है उस बदलाव का, जहाँ उसकी मेहनत को सिर्फ अनाज के दानों में नहीं बल्कि सम्मान की नज़रों में मापा जाए। वह थक जाता है मगर हारता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि बीज बोने और फसल काटने के बीच जो समय बीतता है वही उसके धैर्य का की असली परीक्षा होती है। वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे अपनी ज़मीन और अपने खुदा पर, अपने भगवान पर अटूट भरोसा होता है कि आज नहीं तो कल यह मिट्टी सोना ज़रूर उगलेगी।
0: और किसान का इंतज़ार सिर्फ एक फसल का इंतज़ार नहीं है, उसे उस दिन का इंतज़ार है जब वह खेत की हर मेड़ पर खुशहाली का दिया जलाता है। वह जानता है कि वक्त बदलेगा, हवाएं बदलेगी और उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। और बिल्कुल वंदना, सलाम है उस अन्नदाता के हौसले को जो खुद भूखा रहता है और पूरी दुनिया के पेट भरने की उम्मीद को जिंदा रखता है। उसका इंतज़ार ही इस दुनिया की नींव है।
1: बिल्कुल, और इसीलिए कहा गया है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।

0: आशा बात हो रही है इंतज़ार की, तो एक प्यारा सा इंतज़ार और भी होता है जो होता है दोस्ती का, जो समय की धूल के साथ उस पे धूल तो जम जाती है, लेकिन जब सदियों बाद पुराने दोस्त से मिलना होता है तो कहने को तो ये सिर्फ एक मुलाकात होती है, लेकिन असल में ये अपने ही बीते हुए बचपन और उन बेपरवाह गलियों से मिलना होता है जिनमें हम जिन्हें हम कहीं पीछे छोड़ आए। आज जब घड़ी की सुइयां करीब आ रही हैं तो सीने में एक अजीब सी हलचल है। क्या वो अब भी ऐसा ही दिखता होगा? क्या हमारी बातें अब भी उसी मोड़ से शुरू होंगी जहां हमने छोड़ी थी? वो हंसी, वो बिना बात के झगड़े और वो उधार की चाय के किस्से, सदियों का इंतज़ार आज जैसे कुछ ही पलों में सिमट आया है। पुराने दोस्त का जो इंतज़ार होता है वो असल में अपनी जड़ों को लौटने का इंतज़ार होता है।
1: और साथ में एक इंतज़ार हम भूल रहे हैं, और वो है बच्चों का इंतज़ार। इंतज़ार हर किसी को है, तो बच्चों को भी है। बच्चों को स्कूल की घंटी बजने का इंतज़ार कि कब छुट्टी होगी। बच्चों को रहता है गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार जो अब हो चुकी है, क्योंकि वो दादी नानी के घर जाते हैं, घूमने जाते हैं, हॉबी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो उनको एक मतलब वो अच्छा लगता है उनको जब उनकी हॉबीज़ पूरी होती
0: हम भी बच्चे थे आशा, और हमें भी ऐसा लगता था कि जल्दी से छुट्टियां आए और हम वो सारे हमारे
1: है।
0: पेंडिंग काम कर लें और सारे जो गेम्स हमारे रखे हुए हैं उनको निकाल के बस खेलना स्टार्ट कर
1: और
0: दें।
1: बच्चों को एक इंतज़ार और रहता है, वो जन्मदिन का, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन का एक अलग ही मज़ा होता है। उनको एक स्पेशल अटेंशन मिलता है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है, और बहुत
0: बिल्कुल।
1: सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, नए खिलौने मिलते हैं जो उनके बचपन के साथ ही होते हैं। और साथ में बच्चों को इंतज़ार होता है मेलों का, त्योहारों का, क्योंकि इन्हीं त्योहारों में वो बहुत कुछ नया सीखते हैं, जिससे उनमें नए संस्कार भी डेवलप होते हैं। और मेलों में तो खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, झूले, गेम जोन में जाकर गेम खेलना, तो ये जो बच्चों का इंतज़ार है ये अलग ही मौज मस्ती का है जो उनको काफ़ी मज़ा देता है।

0: तो सखियों, सच तो ये है कि इस संसार में इंतजार ही उम्मीद को जिंदा रखता है।
1: और इसी इंतज़ार को अब ख़त्म करते हैं इस कार्यक्रम का, क्योंकि आशा जी समय हो चुका है पूरा। और आज के कार्यक्रम में हमारे सहयोगी थे HPT से विक्रम सिंह भाटी, प्रेम किशोर सैन, और कंट्रोल रूम से प्रकाश पंवार, FM पर थे CL सोनी, और कंसोल से प्यारे प्यारे गीतों तक को आप तक पहुंचाया मेघा गौड़ ने।
0: और इस कार्यक्रम की परिकल्पना और संपादन था सफलता चारण का। अपने सपनों को बुने इंतजार और धैर्य के साथ। इसी के साथ अपनी रेडियो सखी आशा अडवाणी और
1: वंदना शर्मा को दीजिए
0: दीजिए इजाजत।
1: इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी वाटिका। यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय

द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों

0: पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: If you heard me earlier,
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
4: ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
5: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ेचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है।

0: सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बाजीगर से ये गीत। आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में बोल हैं रानी मलिक के और संगीत है अनु मलिक का।

आइए अगला गीत सुनते हैं। फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में बोल हैं रानी मलिक के।

श्रोताओं आइए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनते हैं। फिल्म दिल तो पागल है से उदित नारायण और लता जी की युगल आवाजों में, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है उत्तम सिंह का।

आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म जीत से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। बोल हैं समीर के और संगीत है नदीम श्रवण का।

मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के 3 बज चुके हैं। आज की हमारी यह सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में आइए सबसे पहले सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। और जी, क्या है आपके हाल? और उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया है। और बढ़िया क्यों नहीं हो भैया, वैसे भी गर्मी बहुत तेज़ है और जब भी शाम का समय होता है ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ी सी राहत जो है अब हमें मिलने वाली है। और यही राहत हम भी लेकर आते हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं युवा पसंद कार्यक्रम युवाणी। आज आपके साथ मैं हूँ आपका रेडियो रागी रोहित, और आज मेरे साथ है
1: जी हाँ, बिल्कुल। इस आवाज़ का नाम राहुल। और आज की शाम, सैटरडे की शाम, बहुत सारी बातें, बहुत सारी मस्ती। देश दुनिया में क्या चल रहा है, स्पेशली राजस्थान की क्या कुछ खास खबर, क्या खास
0: बिल्कुल
1: बात, और युवाओं को लेकर क्या कुछ चीज़ें हो रही है इस वक्त, पूरी जानकारी आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। रेडियो बडीज़ दो, इस आवाज़ का नाम राहुल, और हमारे साथ हैं,
0: बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो रागी रोहित।
1: पढ़ते हैं आगे, सुनते हैं आज की शाम का ये पहला म्यूजिकल ट्रैक।

0: बिल्कुल जी, और इट्स बेहतरीन गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। शाम का समय हो चुका है और आप सुन रहे हो पसंद कार्यक्रम युवाणी। और राहुल, बात कर रहे थे हम ना गर्मी की। अभी देखा जा रहा है तो जोधपुर का, राजस्थान में जो टेम्परेचर है, और राजस्थान का और जोधपुर की स्पेशली बात करें तो 40 डिग्री से 45 डिग्री तक के बीच टेम्परेचर जो है वो पहुँच रहा है। और भैया, सबकी हालत ना एकदम फुल पसीने वाली कर
1: फुल
0: रहा है।
1: पसीने वाली हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने, इतना टेम्परेचर तो मतलब भाई जब एग्जाम में कम नंबर आते थे ना तब पिताजी का भी नहीं होता था उससे कहीं ज़्यादा। जो फिलहाल
0: बिल्कुल
1: आज
0: बिल्कुल
1: हमारे बाहर मौसम हो रखा है और सूरज देवता बराबर अपने छाए हुए हैं, प्रकोप बराबर बरसा रहे हैं लोगों पर। लेकिन आपको जो है वो हर चीज़ से बचना है, अपने आप को जो है वो पानी पीते रहना लगातार, और अपने के साथ साथ अपनों का भी ख्याल बराबर रखना है।
0: बिल्कुल, अगर आपको बार आप कुछ काम कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि बहुत पसीना हो रहा है, तो भैया फटाफट से पसीना साफ करते रहिए, क्योंकि अभी जो फंगल इन्फेक्शन है, स्किन से जुड़ी हुई जो डिजीज़ है, वो भी काफ़ी सारी फैल रही है। और उसके भी बहुत सारे खतरे हैं कि फंगल इन्फेक्शन आपको कहीं ना कहीं पर हो सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो उस जगह को जो है वो थोड़ा सा पोंछ लीजिए, थोड़ा सा सुखा लीजिए।
1: फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ और भी कई सारी बीमारियां हैं जो इस गर्मी में आपको लग सकती है, लेकिन उससे आपको बचाव करना है। जैसा ये लू बचना है जो
0: बिल्कुल
1: हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, अगर इससे आपको बचना है तो ठंडी हवा में जो है वो ये कोशिश करें कि आप जो सफ़र है वो या तो मॉर्निंग में करें या
0: या फिर
1: फिर
0: इवनिंग में,
1: इवनिंग में करें,
0: बिल्कुल
1: दोपहर के टाइम में जो है वो सफ़र करने को अवॉइड करें।
0: बिल्कुल। और ये कुछ बातें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, और अगर इन बीच में कोई भी इन्फेक्शन आपको दिखता है, खुजली दिखती है या फिर ऐसा कुछ भी दिखता है, तो घर आके आप ठंडे पानी से, मतलब नॉर्मल पानी से, ऐसा नहीं कि बर्फ़ डाल

0: दें उसमें, नॉर्मल पानी से आप नहा सकते हैं, और डॉक्टर की जो सलाह है वो
1: बिल्कुल उसे
0: बहुत
1: ले सकते
0: जरूरी होती
1: हैं।
0: है जीवन में, वो आप ले सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे युवा पसंद कार्यक्रम युवाणी, मैं हूँ आपके साथ रोहित, और मेरे साथ है
1: जी बिल्कुल, इस आवाज का नाम राहुल, और बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने, अगला ट्रैक म्यूजिकल ट्रैक आपकी नजरिए रहा साहब।

0: इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। और भैया एक जो है बैड न्यूज़ थी, जितने लोगों जो है नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया था उनको पता चला था कि परीक्षा जो है वो रद्द हो गई, और उसके बाद में जो है उनका स्ट्रेस लेवल जो है एकदम हाई पे पहुंच गया था। और वो हमेशा वो सारे स्टूडेंट यही सोच रहे थे कि नई डेट जो है, नई एडवाइजरी जो है कब आएगी। और फाइनली जो सरकार है उन्होंने जो नई डेट है वो बता दी है, जो कि रहेगी 21 जून 2026, यानी कि जो री एग्ज़ामिनेशन है वो 21 जून को होंगे, और इनके जो एडमिट कार्ड है वो 14 जून से जारी हो जाएंगे। तो आप अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे 14th के बाद में, और 21 जून 2026 जो है आपका री एग्ज़ामिनेशन डेट रहेगा।
1: बिल्कुल रहेगा, और इसमें कई सारे छोटे छोटे बदलाव हैं जो कि एक हफ्ते की विंडो देकर आपको दोबारा जो है वो परीक्षा का शहर चुनने का मौका मिलेगा,
0: बिल्कुल
1: और ज़रूरत पड़ने पर सेंटर बदलने का विकल्प भी आपको दिया जाएगा। और इस एग्ज़ाम में 15 मिनट का आपको जो है वो समय अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा
0: बिल्कुल
1: मिलेगा, 15 मिनट का टाइम आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा। यात्रा की अगर बात करें तो केंद्र राज्य सरकारें मिलकर छात्रों के परिवहन की व्यवस्था करेगी, और मौसम व दूरी को देखते हुए वैकल्पिक इंतजाम भी जो है वो इस परीक्षा को लेकर किए जाएंगे। तो
0: बिल्कुल।
1: भाई नीट
0: और
1: यूजी की परीक्षा के जो छात्र हैं जिनको प्रेशर था, स्ट्रेस था, कुछ न कुछ टेंशन चल रही थी दिमाग में कि भाई क्या होने वाला क्या नहीं, भैया आप रखिए अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी।
0: बिल्कुल, और एक बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि जो फीस आपने सबमिट करवाई थी वो वापस आपको रिटर्न हो जाएगी, और ये जो री एग्जामिनेशन होंगे इसकी फीस जो है वो नहीं लगेगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है निःशुल्क रहेगा, और इसके जो आपने पहले एग्जाम की जो भी फीस सबमिट करी थी वो वापस आपको मिल
1: बिल्कुल मिल
0: जाएगी।
1: जाएगी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। फिलहाल आप और मिलकर बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मज़ेदार से गाने, प्रोग्राम यू वाण इज़ ऑन।

0: वेलकम बैक है जी आपका एक बार फिर से। इस वक्त प्रोग्राम युवाणी को एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज़ के साथ। इस आवाज़ का नाम राहुल और मेरे साथ हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ
0: और
1: रोहित।
0: भैया बात चल रही है परीक्षाओं की, तो परीक्षा में एक और परीक्षा का जिक्र हम कर लेते हैं जिनका स्टूडेंट्स को, जो एस्पिरेंट्स है कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो सब इंस्पेक्टर की जिन लोगों ने परीक्षा दी थी 2021 में, उनके लिए अपडेट आ चुका है नया। 30 मई तक जो है वो अब संशोधन होंगे फॉर्म में, और जो पुनः इसकी परीक्षा की डेट है जो 2021 में हुई थी उसको रद्द कर दी गई, और इसके बाद अब ये जो पुनः परीक्षा होगी वो होगी 20 सितंबर को। इसमें पुनः आयोजित होने वाली परीक्षा में केवल वही स्टूडेंट जो है वो शामिल हो सकेंगे। उनके लिए स्पेशल बात है जिन्होंने इस 2021 वाली परीक्षा में दोनों पेपर में जो लोग अटेंड रहे थे, जिनकी जो अटेंडेंस है दोनों पेपर में रही थी, वही जो है इस परीक्षा के लिए अनिवार्य होंगे।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ जिन लोगों को संशोधन नहीं करना है, जिनको लगता है कि सारी जो डिटेल्स है वो एकदम सही है, फिर भी उनको OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले उसके लिए आप कर सकते हैं कि एडिट मोड में जाकर के आपको अपना जो सिग्नेचर है वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा। साथ साथ में आपको लाइव फ़ोटो भी वहाँ पर क्लिक करवानी होगी और अपने अंगूठे यानी कि फिंगरप्रिंट्स भी आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे। और ये सब देने के बाद में फाइनल सबमिट आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उससे OTP प्राप्त कर करके भी आपको वहाँ पर OTP जो है डालना पड़ेगा। इससे ही आपका जो पूरा फॉर्म सबमिशन है वो पूरा होगा। अगर आपको उसमें कोई भी संशोधन नहीं करवाना है, उसके बावजूद भी आपको अपने आप को वहाँ पर वेरीफाई करवाना ज़रूरी हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ना राहुल, कई लोगों ने जो है SSO ID जो होता है वो बदल दिया होता है, तो उसके लिए भी अगर आपने SSO ID बदल दिया है तो आप नई SSO ID बना करके अपना जो पुराना फाइल का डेटा है वो भी फेच कर सकते हैं, जिससे कि जितनी भी डिटेल्स आपने अपनी पुरानी SSO ID में सबमिट करी थी, जो भी सारी डिटेल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएगी और वो सीधी आपके नई SSO ID पर आ जाएगी। तो SSO ID बहुत इंपॉर्टेंट होती, तो आप उसके पासवर्ड, आप अपनी SSO ID का यूज़र नेम भी संभाल कर रखें, वो सब भी ध्यान रखें, और अगर कोई संशोधन नहीं है तो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना।
0: जी बिल्कुल सही बात करी आपने, क्योंकि ये परीक्षा जो है वो 2021 में हुई थी और फिलहाल चल रहा है 2026, तो कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आ रही है कि भैया हमारी उस वक्त SSO ID अलग थी, अब
1: बिल्कुल
0: अलग है। तो वो फैच एप्लीकेशन फॉर्म का विवरण उपयोग कर पुरानी आईडी का डेटा नए प्रोफाइल में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। इससे पुराने आवेदन और रिकॉर्ड की पूरी जानकारी जो है आपके नए सिस्टम से वापस जुड़ जाएगी। तो ये थी ऐसा ही भर्ती 2021 की जानकारी, जो कि अब 20 सितंबर को इसकी पुनः परीक्षा होने वाली है। फिलहाल आप और मिलकर बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने प्रोग्राम रिवाणी ऑन हिसाब।

0: राहुल, एक बात करने वाली बात हो गई कि भैया जो हेल्दी लाइफस्टाइल से तो हम सब लोग बोलते हैं कि हेल्दी रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम चेंज करते हैं ना तो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसे घुली हुई है कि हम कितना भी कर लें लेकिन उनसे हम बच नहीं सकते। और उनमें से सबसे मेन चीज़ हो गई माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक्स अगर हम देखें तो पानी की बोतल में भी मिल जाते हैं, अगर हम चाय पीने कहीं जाते हैं तो वो छोटे जो कप मिलते हैं डिस्पोजल
1: डिस्पोजल
0: कप्स
1: कप,
0: उनमें भी हमें मिल
1: हाँ
0: जाते हैं। आजकल जहाँ पर भी हम फास्ट फूड खाने जाते हैं तो हमको ना प्लास्टिक के बर्तन दे दिए जाते हैं या फिर थर्माकोल की प्लेट्स हमें दे दी जाती है, तो उनके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हमें भर भर के मिलता है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जा करके वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता ही करता है।
1: जी बिल्कुल करता। और इससे बचने के लिए इसके ऊपर बिल्कुल तीन लोगों ने काम किया है, तीन किशोर देश के, जिन्होंने छात्रों ने इमली के बीज से एक ऐसा पाउडर बना दिया है जो पानी के माइक्रोप्लास्टिक को हटाने में मदद करेगा। और इस खोज के लिए उन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया, द अर्थ पुरस्कार 2026 एशिया का इनको विजेता चुना गया है।
0: बिल्कुल, पानी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल्स में और ऐसी कई लिक्विड वाली जो चीज़ होती है जैसे कि पानी के टंकी, और उनके अंदर छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक बहुत सारे होते
1: ऑब्वियस
0: हैं और
1: ऑब्वियस होते हैं,
0: वही हम
1: मिलते ही
0: लोग
1: हैं वो
0: कंज्यूम
1: तो।
0: करते हैं। और बिल्कुल, द अर्थ पुरस्कार 2026 इनको दिया गया, मैंने भी सुना था। और इनके नाम है, इनमें से तीन जो है वो एक 16 वर्ष का विवान छावछारिया है और अरियाना अग्रवाल है और आव्याना मेहता। इन्होंने एक प्लास्टिक नाम का एक प्राकृतिक पाउडर जो है वो इन्वेंट किया जो कि पानी के अंदर मौजूद छोटे छोटे जो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनको आपस में जोड़ती है और एक बड़ी बॉल या एक बड़ा गुच्छा जो है वो बना देती है जिससे बाद में हम मैग्नेट से या फिर किसी भी अलग यंत्र से हटा सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ईजी चीज़ हो जाएगी कि छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स जो होते हैं उनको ढूंढना ही बहुत बड़ी
1: बड़ी
0: बात
1: बात
0: होती
1: हो
0: है, उनको
1: जाती
0: देखना
1: है।
0: ही बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि वो माइक्रोस्कोप से ही हमें दिखते हैं। लेकिन उनका एक बड़ा बॉल या फिर उनका एक गुच्छा अगर हम बना दें तो ह्यूमन आई जो है हम भी अपनी इंसानी आंखों से देख सकते हैं और उसे हटाना बहुत इजी हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और इससे इनको जो है $1 लाख यानी कि 96 लाख रुपीज भी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाने वाली है। और आगे जा करके इस टेक्नोलॉजी को ये और अच्छा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें फिर एकदम ईजिली हर एक जगह पर देखने को मिले और शायद इससे हमारी जो सेहत है वो थोड़ी सी और सुधर सके।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये हमारे लिए बड़ा ही प्राउड मोमेंट है कि हमारे भारत के बच्चों ने जो ये आविष्कार किया,
0: बिल्कुल
1: ये हमें गर्व करने की बात है। और ऐसे ही आविष्कार करते रहें। और फिलहाल प्रोग्राम युवन चल रहा है, मज़ेदार से गाने हैं और मज़ेदार सी बातें और भी बाकी हैं। और बताएंगे आपको बातें क्या कुछ खास आज के प्रोग्राम में, बढ़ेंगे आगे सुनेंगे ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: हाँ जी, स्वागत है आपका। वेलकम बैक जो एक बार फिर से प्रोग्राम युवाने को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप। और फिलहाल बात करें युवाओं की, तो युवाओं में सोशल मीडिया का कल्चर अभी फिलहाल पीक पर चल रहा है। हर किसी के पास अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट है और उसे हैंडल कर रहा है, किसी न किसी तरीके से कुछ पिक्चर्स अपलोड कर रहा है। कुछ लोगों के तो ये कमाई का साधन भी आजकल ये बन चुका है। और ऐसे में क्या है कि ये सोशल मीडिया पर हर रोज़ कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आते रहते हैं अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। तो आज क्या नया अपडेट है रोहित, बता दो हमारे लिसनर्स को।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यूथ के बीच में ही नहीं, सारी जनरेशन के बीच में
0: ऑब्वियस
1: एक अहम हिस्सा बन गया उनके जीवन का। और इस बीच में काफ़ी लोग जो है वो बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं इंस्टाग्राम से। और इसी बीच में ना इंस्टाग्राम ने जो इंस्टाग्राम जो स्पेशली ऐप है जो मेटा है, उन्होंने एक स्कीम, उन्होंने एक बोल सकते हैं कि जो जितने भी फेक अकाउंट होते हैं वो सिक्योरिटी के पर्पज़ से जितने भी फेक अकाउंट है या जितने भी ऐसे अकाउंट है जो कि बहुत टाइम से काम नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें वो सस्पेंड कर रहा है। सस्पेंड मतलब उन्हें वो डिलीट कर रहा है, उन्हें वो हटा रहा है,
0: ऑटोमेटिकली।
1: जो बिल्कुल जो फेक अकाउंट्स है। इस बीच में कई ऐसे अकाउंट है जो है तो रियल, जो रियल जो पर्सन है वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो इतने एक्टिव नहीं है उनके ऊपर, तो उनके भी जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो रहे हैं। और इस बीच में ना कई सारे जो ब्लॉगर्स हैं उनके भी अकाउंट डिलीट हो रहे हैं, उनके भी अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। और अगर आपको भी ये डर सता रहा है कि भैया कहीं ना कहीं हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड नहीं हो जाए, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ जो है वो आप कर सकते हैं, और वो ये है कि आप जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर जाएं, उसे ओपन करें, और जहाँ पर आपकी छोटी सी प्रोफाइल आपको दिखती है उस पर क्लिक करके अकाउंट सेक्शन में आप जा सकते हैं। उसके बाद में वहाँ पर आपको तीसरे या चौथे नंबर पर सेल्फी वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर और जो भी ईमेल एड्रेस आपने रजिस्टर करवा रखा है उस पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी उसके अंदर सबमिट करें, और उसके बाद में वह आपको सेल्फी क्लिक करने के लिए कहेंगे, तो आप उसमें अपना सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। और लाइव सेल्फी वेरिफिकेशन के बाद में आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर हो जाएगा, और उसके बाद में आपके अकाउंट के सस्पेंड होने की जो चांसेस हैं वो 100 से 1 ज़ीरो हो जाएगी।
0: देखो, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर सोशल मीडिया का बहुत अच्छा खासा यूज़ करते हैं, आपको लगता है कि यार मेरा ये अकाउंट है जो बना रहे, मैं इसे और भी चला चलाना चाहता हूँ, तो ये जो काम है आप एक बार ज़रूर कर लें। जब भी फ्री हो, 5 मिनट का प्रोसेस है, आप उस चीज़ से बच जाएंगे कि इंस्टाग्राम को ये तो नहीं लगेगा कि भाई इसका अकाउंट जो है वो फेक है, ये बंदा रियल है। फिलहाल प्रोग्राम युवाणी जा रही है, और भी मज़ेदार सी बातें आना बाकी है, बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मज़ेदार से गाना। अगला म्यूजिकल ट्रैक आपकी नज़र, येरा साहब।

0: इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आप सुन रहे हो पसंद कार्यक्रम जिसका नाम है युवाणी, और आज मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो रोहित, और आज मेरे साथ है
1: जी बिल्कुल, इस आवाज का नाम राहुल।
0: बिल्कुल। और आज ना राहुल, बहुत स्पेशल डे है आज। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज ना राष्ट्र डेंगू दिवस है, यानी कि वो दिन जब हम सब मिलकर मच्छरों को साफ संदेश देते हैं कि भाई साहब, हमारा खून फ्री वाईफाई नहीं है। तो अगले कुछ मिनटों तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज जानकारी भी होगी, मस्ती भी होगी और जागरूकता भी।
1: दोस्तों, आपने नोटिस किया ही होगा ना कि यार मच्छर दुनिया का वो सबसे कॉन्फिडेंट जीव है। ना इसे सिक्योरिटी का डर है, ना थप्पड़ का कोई असर है, और ना ही रात को 2 बजे परेशान करने की कोई भी शर्म इसके नाम है।
0: बिल्कुल, लेकिन मजाक अपनी जगह है। डेंगू फैलाने वाले एडिन मच्छर काफी खतरनाक होते हैं। ये साफ पानी में पनपते हैं और दिन में काटता है।
1: इसलिए अगर घर में कहीं भी पानी जमा है तो समझ लीजिए मच्छरों ने अपना 1 BHK फ्लैट वहां बुक करा दिया है, कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: लेकिन
1: तो
0: राहुल, इससे जो सेफ्टी मेजरमेंट्स जो हमें बोलते हैं ना, जो हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो यही रहती है कि कहीं भी पॉट होल्स, मतलब जो गड्ढे आपको दिखते हैं जहाँ पर पानी भर गया है, तो आप उन्हें खाली कर सकते हैं। अगर आपके घर की छत पर ऐसा कोई बर्तन पड़ा है जिसमें बारिश की वजह से ही सही लेकिन पानी भरा हुआ है, तो आप उसे खाली करके रख सकते हैं, एकदम सूखा रख सकते हैं, उसे धूप में रख दें, सूख जाएगा क्योंकि गर्मी वैसे भी बहुत तेज़ चल रही है अपने यहाँ पर। और साफ पानी अगर हम, जैसे कई लोग होते हैं ना, वॉशरूम के अंदर बाल्टी भर के रख देते हैं, या फिर किचन के अंदर भी बाल्टी भर के रख देते हैं, या पानी के बर्तन हम भर के रख देते हैं, तो भरने के तुरंत बाद उन्हें अगर हम ढक के रखें तो मच्छर जो है उनके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट मच्छर है
1: देखो,
0: ये।
1: मच्छरों के लिए ना

0: आप एक हॉटस्पॉट की तरह, और आपका
1: बिल्कुल
0: पासवर्ड उन आपके पास रखा हो, भरा हुआ पानी, वो जमा पानी है। अगर
1: बिल्कुल
0: वो देख लिया, अगर हॉटस्पॉट के पासवर्ड उसने देख लिए, वो पजामे पर जमा पानी देख लिया, तो
1: बिल्कुल।
0: आपसे कनेक्टिविटी
1: और
0: कर
1: इनके
0: लेगा।
1: लिए
0: और
1: खास बात यह है कि बहुत स्मार्ट मच्छर है ना, तो साफ पानी ढूंढते हैं कि भैया एकदम साफ पीने
0: वहीं
1: योग्य
0: पनपते
1: पानी कहाँ है,
0: हैं।
1: हम लोग तो वहीं अपना डेरा जमाएंगे साफ
0: हाँ,
1: जगह पर
0: इनका
1: देख
0: वन बीच
1: करके।
0: का फ्लैट वहीं
1: बिल्कुल,
0: है।
1: तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप कहीं बाहर जाएं और आपको लगता है कि आसपास मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहन सकते हैं, फुल लेंथ की पैंट जो है वो कैरी कर सकते हैं, मुंह पर आप स्कार्फ या रुमाल से जो है चेहरा
0: अपने
1: आप
0: आप
1: ढक
0: को कवर
1: सकते हैं।
0: कर सकते
1: तो
0: हैं।
1: जितना ज़्यादा बॉडी एरिया आपका ढका रहेगा, उतना ज़्यादा जो है मच्छरों को ढूंढने में टाइम लगेगा, और वो सोचेंगे भैया कहाँ काटे, इतने में तो आप वहाँ से रफ उचक्कर हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि मच्छर आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। सो आज विश्व डेंगू दिवस, यानी कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज है।
0: और इसलिए डेंगू दिवस के ऊपर मौके पर डेंगू को भी विश्व राष्ट्र दिवस की बहुत बहुत
1: बिल्कुल बिल्कुल, और सेफ्टी
0: शुभकामनाएं।
1: मेजरमेंट्स आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, और थोड़ा सा भी कुछ हो, आपको लगे कि मच्छर ने काटा है, तो फटाफट से जाकर के डॉक्टर से जो है वो सलाह ले लीजिएगा। थोड़ा सा घर पे ही जो घरेलू नुस्खे आजकल होते हैं वो काम करना बंद कर गए हैं, क्योंकि जो डेंगू है, जो ये मच्छर है, इन्होंने जो है इनका एंटीडोट ढूंढ लिया है, तो आप सिर्फ घरेलू नुस्खों की बजाय डॉक्टर के पास ही जाइएगा।
0: देखो, जैसे आप हमारा शो सुन रहे हो डेंगू मच्छर से बचाव के उपकरण, आप भी सुन रहे हो कि भाई किस तरह से हम बचाव कर सकते हो, तो याद रखिए डेंगू भी कहीं ना कहीं सुन रहा होगा, वो भी कोई
1: बिल्कुल
0: नए तरीके निकाल रहा होगा, तो आप अपने आप को जरूर सेफ रखें। फिलहाल के लिए प्रोग्राम युवाणी जोन, आप और हम मिलकर बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने।

0: वेलकम बैक जी। और भैया देखिए, अब युवाओं का कार्यक्रम है और राहुल, अगर हम आईपीएल की बात नहीं करें, क्रिकेट मैच की बात करें नहीं करें, तो फिर भैया नहीं चलेगा। तो फटाफट से जो है क्विक क्रिकेट अपडेट आप हमारे और लिसनर्स को दे दीजिए।
1: क्विक क्रिकेट अपडेट की बात करें तो फिलहाल चल रहा है इंडिया का त्यौहार जिसे कहते हैं आईपीएल और इंडियन प्रीमियर लीग। ये फिर एक लीग नहीं है, सिर्फ एक त्यौहार के बराबर है। जैसे ही शाम के 7:30 बजते हैं जो व्यूवरशिप है वो अपने आप इतनी बढ़ जाती है, लगता है कि यार इतने लोग भाई साहब आते कहाँ से हैं, कहाँ से देख रहे हैं ये लोग। तो फिलहाल बात करते हैं पॉइंट टेबल्स की। तो आरसीबी टेबल टॉप पर बनी हुई है, जीटी सेकंड नंबर पर है फिलहाल, एसआरएच थर्ड नंबर पर है और पंजाब किंग्स चौथे नंबर पर चल रही है। जद्दोजहद अभी भी बरकरार है। आरसीबी और जीटी का कुछ मुकाबला लग रहा है कि क्या पता शायद इनका तो प्लेऑफ में आना कन्फर्म ही दिखाई दे रहा है। बात करें एसआरएच की, एसआरएच की बैटिंग जब शुरू होती है ऐसा लगता है कि जोधपुर की कोई लू है, मतलब बैटिंग करते हैं धुआंधार,
0: धुआंधार
1: पूरी खतरनाक बैटिंग करते हैं और
0: सामने
1: पॉइंट
0: वालों के
1: लेकर चले,
0: पसीने छुड़ा देते
1: पसीने
0: हैं।
1: छुड़ा देते हैं। और फिलहाल आज का मैच भी कुछ खास रहने वाला है और आज का मुकाबला जीटी और केकेआर के बीच में है। जीटी का रास्ता तो साफ हो ही जाएगा, अगर आज का मुकाबला जीत जाते हैं तो प्लेऑफ की रेस में इनका नाम पक्का दर्ज
0: बिल्कुल
1: हो जाएगा, इनकी जो सीट है वो रिजर्व हो जाएगी। लेकिन केकेआर की हालत फिलहाल
0: थोड़ी
1: खस्ता
0: सी,
1: है,
0: हाँ
1: इनके लिए इंतजार है अगले आईपीएल का, इनको अब इनकी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। और फिलहाल आरसीबी, जीटी, एसआरएच, पंजाब किंग्स, सीएसके, आरआर, ये चीजें जो है वो रेस में बिल्कुल बनी हुई हैं। क्या पता देखते हैं किसका नंबर आता है, टॉप फोर में कौन सी टीम आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आईपीएल अभी थोड़ा और बाकी है, लंबा चौड़ा और मस्ती मजाक बाकी है। शाम के 7:30 बजते आप भी अपनी टीवी, अपने मोबाइल फोन के आगे जरूर पे चिपके जाते, मुझे कहने की जरूरत भी नहीं। और गानों का सिलसिला जारी रहेगा, प्रोग्राम निर्माण फिलहाल चल रहा है।

0: वेलकम बैक जी। आप सुन रहे थे युवा पसंद कार्यक्रम युवाणी, और समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। फिलहाल आपके साथ दो रेडियो बड़ीज थे, मैं था आपके साथ आपका रेडियो रागी रोहित, और आज मेरे साथ थे।
1: जी हाँ बिल्कुल, इस आवाज़ का नाम राहुल। आज के प्रोग्राम में हमने बहुत सारी बातें करी है, डेंगू डे के बारे में जाना, IPL अपडेट के बारे में जाना, बहुत सारे युवाओं से जुड़ी हुई एग्जाम को लेकर क्या कुछ खास बात है और उसके बारे में जाना, और आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन रहा राजेश लामरोड का, कंसोल पे हमारे साथ पद्मिनी, और हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए
0: बिल्कुल
1: जोश के साथ। तब तक के लिए अपना
0: जी,
1: ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। समय है हिंदी और अंग्रेजी समाचारों का, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ड ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल

0: नारायण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्नोत्तर तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten. He called on King Willem Alexander and Queen Maxima in The Hague this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community event, Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praise the contribution of the Indian diaspora.
2: Netherlands ke samaj aur yahan ke economy mein jo contribute kar rahe hain us par har bharatvasi ko garv hai. Main aaj is avsar par Netherlands ki janta ka yahan ki sarkar ka aabhar vyakt karta hu. Main yahan ki janta ko 140 crore bharatvasiyon ki taraf se अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
1: Last night when the Prime Minister reached the Netherlands, he was accorded a grand welcome through cultural and musical performances by the diaspora and Dutch troops. After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. The Economic Offences Wing EOW of Delhi Police has busted a goods and services tax GST fraud cartel, arresting 6 persons. Additional Commissioner in EOW Ravi Kumar Singh said in a press conference that the accused used 50 fake shell companies for GST returns, fake billing and wrongful input tax credit claims. He informed that fake GST transactions worth approximately 128 crore rupees were carried out through these firms. The additional commissioner noted that during the investigation, around 51 lakh rupees cash, 15 mobile phones, 2 cars, fake invoices and SIM cards were reported. The West Bengal government has moved to withdraw the state's ongoing case in the Supreme Court regarding OBC reservation. On Thursday, government lawyer Kunal Memani wrote to the Supreme Court registrar requesting an urgent hearing to formally withdraw the matter. On the 22nd of May 2024, the Calcutta High Court struck down the OBC list prepared by the TMC government and ordered a fresh list to be created. The then state government appealed against that verdict in the Supreme Court, where the case is currently being heard by a bench headed by the Chief Justice of India. The Central Bureau of Investigation, CBI, today arrested a mastermind connected with the leak of biology questions in the NEET UG 2026 paper leak case. The accused, named Manisha Gurunath Mandhare.

रात्रि का संगीत संसार भी रहेगा बेहद मनमोहक। 8:09:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत, जहां पर धुन आपको सिनेमा के सुनहरे दौर की सैर कराएगी।

9:15 पर पेश होगा सुरों की सरलता से सजा कार्यक्रम सुगम संगीत। नौ बजकर 30 मिनट पर राष्ट्रीय चित्र पत्रिका चित्र भारती, जिसका प्रसारण किया जाए प्रसारित होगा दिल्ली से। 10 बजे सुनिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जहां देश भर के श्रेष्ठ कलाकार अपनी शास्त्रीय प्रस्तुतियां देंगे। 10:00 थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका कार्य प्रसारण समय। अब एक नजर कल के होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह की शुरुआत होगी मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार के साथ, जिसमें रहेगी दिन भर की उपयोगी जानकारियां, मौसम का हाल और समाचारों की झलक।

इसमें सप्ताह विशेष मेहमान का रविवार, जिसमें हमारे फोन माध्यम से जुड़ेगी डॉक्टर भूमिका द्विवेदी, जो शास्त्रीय संगीत कलाकार अध्यक्ष संगीत विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। भेंट करता रहेगी नेहा रांकावत।

दोपहर के समय 1:05 पर किसानों के हितों पर आधारित कार्यक्रम कृषि जगत प्रसारित होगा, जिसमें कल चर्चा की जाएगी कुष्मांड कुल की सब्जियों में रोग नियंत्रक। इसके बाद 1:15 पर सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम नारी वाटिका। दो बजकर 30 पर रहेगा फिल्म संगीत। शाम का समय युवाओं के नाम, 5 प्रसारित होगा युववाणी, जिसमें जोधपुर के युवा अपने विचार, रचनाएं और सपनों को आवाज देंगे। और एक विशेष भेंट वार्ता, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर डॉक्टर कौशल कुमार हरलाल का, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, से बात होगी राहुल डांगी की। संपादन और प्रस्तुति रहेगी राजेश लामलोड की। शाम को 7 सजेगी चौपाल और 7:30 पर सीमाड़े की गूंज। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 6:45 पर प्रातः 11 और रात 8। और रात्रि 10 सुनिए रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। तो ये थे आकाशवाणी जोधपुर सूर्य नगरी चैनल आज और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। हर कार्यक्रम में जोधपुर की खुशबू है और हर धुन में हमारे मरुधर की आत्मा बसी है। सुनते रहिए आकाशवाणी जोधपुर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है देश की मिट्टी से जुड़े कार्यक्रम देशगान का।

0: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। समय है संस्कृत समाचार का, जिसे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कथितं यत् वैश्विक समाह्वानान् निवारणाय विश्वसनीयस्य भविष्यस्य कृते सज्जतायाः च आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं भारत नेदरलैंड्स देशौ सहभागित्वं कुर्वन्तौ स्तः। भारतमवसराणां भूमीति वर्णितम्। सेनाध्यक्षेण जनरल उपेन्द्र द्विवेदिना पाकिस्तानं भयोत्पादकेभ्यः आश्रयं प्रदातुं भारतस्य विरुद्धं कार्याचरणाय च सावधानं कृतम्। पश्चिमबंग सर्वकारेण एकादशाधिक द्विसहस्रतम वर्षात् प्रदीयमानानां जाति प्रमाणपत्राणां पुनः सत्यापनं कर्तुम् आज्ञापितम्। सीबीएसई इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः छात्राणां कृते उत्तरपत्राणां द्विस्तरीय पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया घोषिता। अपि च थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडायां अद्य बैंकॉक नगरे उपांत्य चक्रीय क्रीडायां मलेशिया देशस्य युगलं पराजित्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग सेट्टी इत्येतयोः भारतीय पुरुष युगलं अंतिम स्पर्धायां प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् भारत नेदरलैंड्स देशौ विश्वस्यापि समाह्वानानां निवारणाय विश्वसनीयं पारदर्शकं भविष्यस्य कृते आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणार्थं मिलित्वा कार्यं कुर्वन्तौ स्तः, यत्सः बहुविध संकटैः ग्रस्तम् आपद्दशकम् इति वर्णितम्। नीदरलैंड्स देशस्य हेग नगरे स्वस्य पंच देशानां यात्रायाः क्रमे सामुदायिक कार्यक्रमं संबोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विश्वं कोविड 19 महामार्या वर्तमान संघर्षेण उद्भूत ऊर्जा संकटं चेत्यादीनां अभूतपूर्व प्रतिसन्धिं सम्मुखीकरोति।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: सः सावधानम् अकरोत् यत् एतेषां समाह्वानानां द्रुतगत्या निराकरणे विफलतया वैश्विक विकासलाभः व्यतिक्रमितः भविष्यति, तथा च जनसंख्यायाः विशालः भागः निर्धनतायां निमग्नः भविष्यति। आर्थिकस्थिति व्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय वैश्विक प्रयासान् प्रकाशयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् भारत नीदरलैंड्स देशौ संयुक्तरूपेण सुदृढ आपूर्ति श्रृंखलायाः निर्माणे केन्द्रितौ स्तः। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी नीदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेटन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। सः अद्य मध्याह्ने हेगनगरे राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा इत्येताभ्यां सह मिलनं कृतवान्। एषा यात्रा द्विपक्षीय सम्बन्धेभ्यः अधिक महत्वपूर्णा अस्ति।

0: तमिलनाडु पुदुचेरी तथा करैक्कल चेत्येत्येषु क्षेत्रेषु अपि एतादृशी एव स्थितिः भविष्यति। विभागेन उक्तं यत् बिहारे राज्ये आन्ध्रप्रदेशे छत्तीसगढ़ राज्ये पूर्वी राजस्थाने झारखण्डे लक्षद्वीपे मध्यमहाराष्ट्रे मराठवाड़ायां जम्मूकश्मीर प्रदेशे लद्दाखे तथा देशस्य उत्तरपूर्वीय भागेषु च अद्य गर्जनेन तीव्रवातैश्च सह झंझावातस्य संभावना विद्यते। विभागेन झारखण्डे मध्यप्रदेशे तथा राजस्थानस्य केषुचित् स्थानेषु उष्णतरंगस्य स्थितेः अपि घोषणा कृता। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडायां अद्य बैंकॉक नगरे उपांत्य चक्रीय क्रीडायां मलेशिया देशस्य गोह सेफेई तथा नूर इज्जुद्दीन इत्यमुं च पराजित्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग सेट्टी इत्येतयोः भारतीय पुरुष युगलं अंतिम स्पर्धायां प्रविष्टवन्तौ। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां अद्य आतिथेय कोलकाता नाइट राइडर्स इतीदं दलं ईडन गार्डन्स इत्यत्र गुजरात टाइटन्स इत्यनेन सह क्रीडिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यनेन दलेन चेन्नई सुपर किंग्स दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त है हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और उसके तुरंत पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू हुआ। सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से जनगणना 2027 के तहत मकानों के सूचीकरण और गणना का काम शुरू हो गया है। आगामी 14 जून तक चलने वाले इस चरण में प्रगणक घर घर जाकर मकानों की निर्माण सामग्री और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में 33 सवाल पूछ रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में इस कार्य के लिए 4,163 प्रगणक तैनात किए गए हैं। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने आमजन से सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की है। उधर पाली जिले में भी 3,000 से अधिक प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए वास्तविक लोकेशन के साथ आंकड़े जुटा रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न तक पूरी पहुंच थी। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित उनके आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाईं। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। कल गिरफ्तार किए गए 2 अन्य आरोपितों को पुणे की अदालत में पेश किया गया और पारगमन रिमांड के बाद दिल्ली भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देशभर में 6 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई के इस दौर में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ही देश की संप्रभुता की एकमात्र गारंटी है। श्री शेखावत आज जोधपुर में रक्षा प्रयोगशाला के 68वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक

0: वैश्विक परिदृश्य में अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध का माध्यम नहीं है बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसी तकनीकें भी सामरिक हथियार बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि देश रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शेखावत ने वैज्ञानिकों से विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
1: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब का दौरा कर स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न तकनीकी नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के प्रयासों को देखा। मुख्य सचिव ने एआई और आधुनिक तकनीक पर आधारित शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप्स को पीएम श्री विद्यालयों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली स्तर पर ही बच्चों को उन्नत तकनीक और नवाचारों को समझने का मौका मिलेगा।
2: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आईस्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नेदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने पांच देशों के दौरे के तहत आज नेदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है।
3: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर के मणाई में एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर 51,10,00,000 रूपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही बजट घोषणा के अनुसार स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,000 करोड़ रूपये की लागत से विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनाया जाएगा। श्री पटेल ने बताया कि करीब 400 विद्यालयों को सीएम राइज स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के 1,000 स्कूलों में एआई आधारित लर्निंग लैब्स स्थापित की जाएंगी। जयपुर पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नवाचार कर रही है। इनमें एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप शामिल हैं। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप के बारे में बताते हुए जयपुर के पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा कि ये बहुभाषी ऐप स्मार्ट

0: इरिगेशन और त्वरित सहायता जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
1: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा, किसी टूरिस्ट को कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प मांग सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं, इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
0: जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से जूनियर समर कैंप की शुरुआत हुई। पर्यटन कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने इस शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। 20 जून तक आयोजित होने वाले इस कैंप में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए इस वर्ष 500 से 600 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाए हैं। जवाहर कला केंद्र के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ अनुराधा गोगिया ने बताया कि कैंप के दौरान बच्चों को रंगमंच के साथ साथ कला सहित विभिन्न विधाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
2: नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक में स्टोरी ट्री, इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सकें। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
0: और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। चिलचिलाती धूप और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग के अनुसार अगले सप्ताह प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी जिलों में दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राज्य में एक बार फिर से हीट वेव का दौर शुरू होगा। वहीं 18 मई से पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। झुंझुनू में जागरूकता रैली निकाली गई। ANM ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं के द्वारा निकाली गई इस रैली के माध्यम से डेंगू के बचाव और मच्छरों की रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। जैसलमेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की ओर से मच्छर रोधी गतिविधियां की गई और लोगों को समझाया गया। वहीं करौली में जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेमो, पोस्टर, पैम्पलेट और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू। सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर भीलवाड़ा जिले में शिक्षा के अधिकार को धरातल पर उतारने की मुहिम जारी है। राज्य सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के मामले में भीलवाड़ा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। ये लक्ष्य 1 अप्रैल से शुरू किए गए प्रवेशोत्सव के दौरान हासिल किया गया है। इसके तहत जिले में चिन्हित किए गए करीब 15,500 बच्चों में से 14,790 बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिया जा चुका है। अब भीलवाड़ा जिले में लगभग 5.25% पात्र बच्चे ही स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, जो प्रदेश में सबसे कम है। जिले के

0: तिलोली गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायी पहल देखने को मिली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 10वीं और 12वीं के 6 मेधावी विद्यार्थियों को शानदार परिणाम देने पर हवाई यात्रा की सौगात मिली। युवा भामाशाह दशरथ सिंह राठौड़ ने इन होनहारों को जयपुर से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा पर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना और अन्य छात्र छात्राओं को मेहनत के लिए प्रोत्साहित करना है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी हाल ही में भीलवाड़ा प्रवास पर रहे। उन्होंने मांडल विधानसभा क्षेत्र में पेयजल विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जलदाय मंत्री ने कहा कि सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के मिशन पर काम कर रही है। जिन इलाकों में भी पीने के पानी की समस्या है, वहां टैंकरों के जरिए पानी आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बीसलपुर बांध में पानी की काफी आवक हुई है। ऐसे में अजमेर, ब्यावर, टोंक और जयपुर जिले में पानी की नियमित आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में पानी की दिक्कत नहीं है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीते दिनों भीलवाड़ा आए। उन्होंने जैन समुदाय के संगठन जीतो की ओर से आयोजित सामूहिक नवकार मंत्र जाप कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज के दौर में धर्म और संस्कृति से जुड़े रहना जरूरी है, जिससे नई पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले। जीतो के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिले की चिट्ठी में अब बात ग्राम रथ अभियान की। हालांकि जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ईंधन बचत की कवायद के कारण इसका आयोजन अभी रोक दिया गया है। ग्राम 2026 व्यापक प्रचार प्रसार और लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए ही ग्राम रथ अभियान शुरू किया। इसके तहत सभी जिलों के ग्राम पंचायतों पर ग्राम रथ पहुंच रहे थे। भीलवाड़ा जिले में भी जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु के निर्देशन में ग्राम रथ अभियान संचालित किया गया। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने भी जिले का दौरा कर ग्राम रथ का जायजा लिया। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर खरीफ फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज और खाद के भंडारण के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जिले के प्रवास पर रही। उन्होंने सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम रथ अभियान में शिरकत की। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ग्रामीण रथ अभियान के तहत आसींद क्षेत्र में रात्रि चौपाल में शामिल हुए। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के मौके पर जिले में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। वहीं पुलिस प्रशासन की सतत निगरानी के चलते इस दौरान जिले में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। हालांकि मौसम में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई और कुछ जगह ओले भी गिरे। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि गर्मी में पेय पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। उन्होंने प्रचंड गर्मी के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी रखने को कहा है। भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, जनगणना 2027 रा तहत राज्य में आज मकाना रे लिस्ट बनावन रो काम शुरू हुयो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित ने पकड़ियो। हाल ताई 9 जना गिरफ्तार करी चिया। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलां में नुआ कोर्स शुरू करिया जावेला। और प्रदेश का घणखर हलका में जबरदस्त गर्मी। आवता सप्ताह में पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। जनगणना 2027 रा तहत प्रदेश में आज मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू फेक्यो। 14 जून

0: संचालन वाला इनकाम माए प्रगणक घर घर जार मकान बनावन माए काम ली रीजी सामग्री और मौजूद सुबीताना बारा माए 33 सवाल पूछ रहा है। भीलवाड़ा जिला माए इनकाम सारू 4163 प्रगणक लगाई चिया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू जनताओं प्रगणका ने सही जानकारी देर प्रशासन री मदद करन री अरज कीनी है। पाली जिला में आई 3072 प्रगणक मोबाइल ऐप रे जरिए वास्तविक लोकेशन सागे जानकारियां भेड़ी कर रहा है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रा पेपर लीक मामला में आए सीबीआई आज एक और आरोपित महाराष्ट्र रा पुणे री बोटनी री शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे ने गिरफ्तार कीनी। वाने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी विशेषज्ञ रा तौर नियुक्त कीनी ही। जांच एजेंसी रे मुजब वारी जूलॉजी और बोटनी रा पेपर ताई पूरी पहुंच ही। सीबीआई रे मुजब वा 14 मई ने पकड़ी जी आरोपित मनीषा वाघमारे रे मार्फत नीट परीक्षा रा उम्मीदवार ने वारा पुणे रा घर माए खास कोचिंग दीनी। ई मामला में हाल ताई दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे और अहिल्यानगर 9 आरोपिता ने पकड़ी चिया है। काल गिरफ्तार करी जिया 2 आरोपिता ने पुणे री अदालत सामी पेश करी जिया जठों वाने अदालत दिल्ली भेज दीना। लाला 24 घंटा माई सीबीआई नैरी नैरी ठोड़ाऊ कई आपत्तिजोग कागजात लैपटॉप बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त कीना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि एआई रा दौर माए देश री हिफाजत रा हल्का माए खुद रे पाण उबो वेवणोई देश री संप्रभुता री गारंटी है। वे आज जोधपुर माए रक्षा प्रयोगशाला रा 68वां स्थापना दिवस रे मौके राखी जिया कार्यक्रम माए बोल रहा हा। केंद्रीय मंत्री कहो कि दुनिया रा बदलता हालात माए अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध रो जरियो नी है बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर चिप बनावन सरीखी तकनीक आई लड़ाई रा हथियार बन की है। वह कहो कि देश हिफाजत रा हल्का माए काम आवन वाला साजो सामान दिसावर उ मंगावन री बजाय देश माई बनार खुद रे पाण उबो भेवन ओड़ी तेजी बढ़ रियो है।
1: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
0: राजस्थान विधानसभा बनिया 75 साल वे वनरे मौके 18 मई ने विधानसभा रा नुआ लोगो रो विमोचन और ऐतिहासिक दरूजा रो नामकरण करियो जावेला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बतायो कि लारला 2.5 साल माए राजस्थान विधानसभा माए डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था, डिजिटल संग्रहालय, संविधान दीर्घा और जन दर्शन सरीखा कई खास नवाचार करी जिया जाऊं इनरी देश माए खास ओळखाण बनी है। इन खास कार्यक्रम माए राज्यपाल हरिभाव बागड़े, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विपक्ष रा नेता टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल समेत कई मान्योड़ा लोग शामिल फैला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर रा भामाशाह टेक्नोहब रो दौरो कर स्टार्टअप्स और नौजवान कारोबारियां कानियों करया जा रहे तकनीकी नवाचारां री जानकारी लीनी। वे रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण सरीखा खास हलका माए स्टार्टअप्स री कोशिशां देखी और वानी सराहना कीनी। मुख्य सचिव एआई और नवी तकनीक माथे आधारित भणाई लिखाई जुड़िया स्टार्टअप्स ने पीएम श्री स्कूलाऊं जोड़बा माथे जोर दीनो।
2: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आई स्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर।

0: प्रजमेनु सुन रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत और नीदरलैंड दुनिया रा संकटन और सामो करण सारू भरोसेमंद साफ और आवता बगत सारू तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनावन रे बारा माय मिलर काम कर रहा है। वे पांच देशों रा दौरा रा तेत आज नीदरलैंड रा हेग माय भारतीय समुदाय रा लोगा ने संबोधित कर रहा है। श्री मोदी ऊर्जा संकट सरीखी चुनौतियां रो निपटारो बेगो नी वेवन री सूरत माए दुनिया रा विकास माथे असर पड़बा सागे मोटी आबादी रे गरीबी री ओर बढ़वा री शंका जताई। प्रधानमंत्री कहियो कि 21वीं सदी माए भारत मौका री धरती बैन अर सामी आयो है जो तकनीक अर इंसानी मूल्यां रा आधार आगे बढ़ रियो है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रे मुजब व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलों में नुआ कोर्स शुरू करिया चावेला। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर जिला रा मणाई में एक स्कूल में राखी जा कार्यक्रम में आ जानकारी दीनी। वह कहो के ई काम माथे 51 करोड़ रूपये बत्ती रकम खर्च करी चावेला। मंत्री बतायो के बजट माय करी जाए ऐलान रे मुजब स्कूला माय बुनियादी ढांचा रा विकास सारू 2000 करोड़ रूपया रो विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनायो चावेला। श्री पटेल बतायो के करीब 400 स्कूला ने सीएम राइज स्कूला रा तौर विकसित करी जावेला और 1000 स्कूला माय एआई आधारित लर्निंग लैब्स खोली जावेला। सैलानियारी हिफाजत और सुविधा सारू जयपुर पुलिस एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप सरीखा नवाचार कीना है। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप री जानकारी देता थका जयपुर रा पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल कहो कि न्यारी न्यारी भाषावां माय काम करण वालो ओ ऐप स्मार्ट नेविगेशन और तुरंत मदद सरीखा सुविधाई मुहैया करावेला। वे बतायो के ई ऐप रे मार्फत सैलानिया ने सुरक्षित गेलां री जानकारी सत्यापित गाइडां री लिस्ट और मुश्किल भगत माय मदद मिल सकेला।
2: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा, किसी टूरिस्ट को कभी किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प मांग सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं, इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
0: जयपुर राज जवाहर कला केंद्र में आज जूनियर समर कैंप शुरू हुआ। पर्यटन कला और संस्कृति विभाग के शासन सचिव शुचि त्यागी इनरो उद्घाटन कीनो। 20 जून तक चलने वाला इन कैंप में मोटी तादाद में बच्चा नाम मंडाया है। जवाहर कला केंद्र री अतिरिक्त महानिदेशक डॉ अनुराधा गोगिया बतायो कि शिविर में बच्चा ने रंगमंच सागे कला समेत न्यारी न्यारी विधावारी व्यावहारिक सिखावण दी जा रही है।
3: नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक हुई स्टोरी चीज, इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सकें। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
0: अरब मौसम प्रदेश रा घनखर हल्का माए जोरदार गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग रे मुजब लाडला 24 घंटा माए फलादी 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागे सब 19 ठोड़ रहे हो। महकमा रे मुजब आवता सप्ताह प्रदेश रा घनखर हल्का माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार है। इन दौरान उगनी रातुणी हल्का माए तापमान

0: 45 डिग्री सेल्सियस ताई पुगण दी संभावना है। इविचे 18 मई आतुणी और उत्तराध हल्का माए जोरदार बायरो बजण दी संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस रे मौके प्रदेश में ही कई कार्यक्रम रखी चिया। झुंझुनू में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर री टावरिया री ओर जागरूकता रैली निकाल और डेंगू बचाव और मच्छरों की रोकथाम रे बारे में जानकारी दी रही थी। जैसलमेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रा कर्मचारियों की ओर मच्छर मारण सारू जतन करी चिया और जनता ने जानकारी दी रही थी। करौली में जांच करें, सफाई करें और ढकें मुद्दा माथा चलाया जा रहा अभियान रा तहत शहरी और गांवी हल्का में डेमो पोस्टर पंपलेट और सोशल मीडिया के जरिए जाग जगाई जा रही है। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। जनगणना 2027 रा तहत राज्य में आज मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित ने पकड़ियो। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूल में नुआ कोर्स शुरू करिया जावेला। और प्रदेश रा घणखर हल्का में जबरदस्त गर्मी, आवता सप्ताह पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वा रा आसार। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फेओ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। शाम के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनना सगला हेतालु श्रोताओं ने घने मानसू गुरविंदर बिश्नोई
1: और अनिल चारणरा राम,
0: राम राम। अनिल भाई कई हालचाल है, कई नवी ताजी है, आ तपत इतनी किकर पड़ रही है।
1: हालचाल बहुत बढ़िया है सा, और इन बार आप देखा गुरविंदर भाई के गर्मी जो है वो लाडली साल की तुलना मायने ज्यादा है।

सूरज री जकी तपिश है, शहर री जकी गर्मी है, ये रो जको पारो है वो लगातार ऊंचो चढ़ रियो है। और एक दो दिन पहला 47 डिग्री जको है वो ऑफिशियली डिक्लेयर करियो कि भाई आज जोधपुर शहर रो तापमान 47 डिग्री सेल्सियस है। तो कुल मिलार तापमान में जकी वृद्धि है, ईरे लारे कठे न कठे आपनो हाथ है। इन सभ्यता और इन संस्कृति रे मायने विज्ञान और विज्ञान री टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट पूरी प्रकृति और धरा ने काबू करण री जकी मिनखा होड है। इन होडा होड में आपा इन प्रकृति रा इन पर्यावरण रा गोडा फोड़ रिया तो कठे न कठे भाई बदलाव तो होई।

0: बदलाव होवनु पहला आपा ने कई कह घंटी बजान इशारो करे के भाई महसूस कर लो आउन आला दिन केड़ा होवेला।
1: बिल्कुल सा, ओ जो आपा देख रिया हाँ कने गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कने बिन मौसम बरसात वे रही है, विन लारे मानवीय कारण ही छे। प्रकृति तो हमेशा आप मायने एक संतुलन बनान चालती आई है, लेकिन मानव ही छे जो प्रकृति रो घनी बार अति दोहन कर ले वे। कटी आपा जंगल काट कोलोनिया बसाई दिया, कटी आपा पहाड़ काटन खाणिया बनाई दिया, जमीन रे आपा 100-100, 200-200 फुट ऊंडा जाए आपा मिनरल्स निकाल लिया। इनो जो असर है गुरुन्द्र भाई वो अपनी प्रकृति माती पड़नो है, क्यों आपा प्रकृति रो दोहन कर रिया हाँ।

बिल्कुल देखो भाई के आपा हुणा हा पढ़ा हा देखा कि धरती गोल है। हम भाई एक दड़ी है, उन दड़ी रे मायने भाई 70% तो पानी है, लारे धरा है धरती है। तो लार ले जदू मानव सभ्यता अठे आपरा पांव पसारिया है, अरबों खरबों बरसों पुराणो ओ इन धरारो सफर है। और इन धरारा जीव जंतु पेड़ पौधा नदियां आनो भी इतिहास है।

0: हजारों लाखों बरस पुराणो है। मानव सभ्यता रो भी लाखों साल पुराणो इतिहास है, लेकिन लाडले 100-150 साल में आपा वो करिश्मो वो कारनामो करियो हाँ, क्या आप प्रकृति अब मानवीय सभ्यता रे हमें देख रही है के भाई थे वो कई कर रही हो। अनुमान करो भाई लोगा के हजारों कुआ एड़ा है जकम तेल निकले और गांव गांव ढाणी ढाणी ट्यूबवेल है बटम आपा पानी काढ़ा और दुनिया भर रे महीने जितना भी गैस रा चूल्हा जगे बटम हुआ गैस आपा धराऊ काट रिया बात बात रा खनिज पदार्थ है अर होनोर चांदी कोयलो ग्रेफाइट कोबाल्ट बात बात रा तत्व है जका है इन धरतियों आपा काट रिया और तो और जो को भाटो है वे नहीं काट काट आपा मोटा मोटा खाड़ा कर दिया जटे मोटा मोटा पाड़ा उठे हमें 200-200 फीट तक खानिया पूगीर बालेरी खानिया देखो पहला यू दिखती हमें वो बालेश्वर निकला तो कोरो ऊपर खाड़ा ही खाड़ा दिखे 100-100 फीट 150-150 फीट जकी है लोगा री खानिया नीचे गई पूरी। तो एक छोटे से क्षेत्र में एक छोटी से खदान वाले क्षेत्र रे मायने ओ हाल है। तो इत्ता दुनिया रा देश और उन देश सारी जरूरत पूरी करने लो पेट्रोल डीजल गैस पानी कई कई चीजा आपा काट रिया आखिर कटे न कटे तो आ चीज की दरारे मायने सीमित मात्रा में है कदे न कदे तो आ निटी आउनाले टेम रे मायने इन तरह आपा गैस न तेल न काट रिया तो भाई कदे इन दरारो फटाको बाज सके। आली टेम है सावधान रहो सचेत रहो जका भी साधन सीमित है बने बहुत हो छमजन खर्च करो और जका कठे मौको मिले तो भाई ज्यादा ज्यादा दरखत लगाओ।
1: आप बात करा गुरिंदर भाई खानिया लोग इतनी उंडी खोद दिया इतना खनिज निकाल लिया तो कटे न कटे आप देखा कि मानो आपरो जीवन यापन करने वास्ते किन की कर्म करिया करे और किया भी करे कि वो जो मानव जीवन है वो कर्म प्रदान है। आपरे आप देखा बचपन में छोटा हा स्कूल जाओ था पढ़ाई करनो अपनो कर्म हो छोटा बड़ा विया तो अपने नौकरी करनो कर्म विया यूं हर उम्र मायने आपरा कर्म रा अलग अलग तरीका वे लेकिन कर्म तो आपने करनो ही पड़े। अब इन चीज मायने देखा गुरिंदर भाई तो कर्म भी भांत भांत रहा है। कोई ऑफिस मायने बैठ आराम री नौकरी करे कोई खाणिया मायने काम करे तो कोई घर बने वटे मजूरी करे अलग अलग कर्म है। आप देखा कि वाणे अलग अलग काम करता थका अलग अलग परिस्थितियां सामनो करनो पड़े।

0: देखो पूरी दुनिया रे मायने जका भांत भांतरा काम करनाला लोग है, बड़ी भांत भांतरी समस्या है, भांत भांतरी शिकायत है। अब देखो अनिल भाई के खानिया रे मायने काम करे तो बाजकी जोधपुर खानिया री बात करा, भाटेरी जकी डस्ट है नी,
1: हाँ
0: बा सांस रे हाथे जावे, एड़ी बा सिल्कोसिस जड़ी गंभीर बीमारी हो जावे। ये रे वास्ते जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ये एक योजना है जिमे बीमारी रो मुफ्त इलाज है, और बीमारी अगर होगी तो वे ने नियमित मासिक जो है वे ने अनुदान भी मिले। अगर आप कार्य स्थल माते ए तो जका मजदूर है कम ठेरा काम करे, लेकिन जका फैक्ट्रिया रे महीने काम करे, बड़ा बड़ा कल कारखाना में काम करे, तो उठे जान री क्षति भी हो जावे, अंग भंग हो जावे, कई

0: तो उठे जान री क्षति भी हो जावे, अंग भंग हो जावे। कई लाप देखा कि कोई बॉयलर है वो फाट गयो तो बिनु कई लोगों ने नुकसान हो जावे। तो जो भी कार्य स्थल है उरी सुरक्षा री व्यवस्था जको वो जीरी भी फैक्ट्री है जीरो भी काम है उरी जिम्मेदारी है। उरे साथे साथे वे जका कर्मचारी काम कर रिया है उठे जका लोग काम कर रिया है बाणो शोषण नहीं हुआ। यू नहीं कि भाई चार घंटे रा पया देन काम आठ घंटा करावे। तो इन मुजब भी सरकार रो विभाग बनियोड़ो है कि कठे भाई कोई मजदूर रो कोई कामगार रो कोई कारीगर रो किणी तरह शोषण नहीं हुए। और पहला आपने ते फैक्ट्रिया होती इन फैक्ट्रिया का कानून ही ढीला डाला होता। मैं ज्यू ज्यू आप आगे एडवांसमेंट जा रहा हूं तो जटे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है उठे एकदम व्यापक बदलाव आयो है। भाई तनखा मुजब आयो है ड्यूटी मुजब आयो है सुरक्षा मुजब आयो है। और सरकारी दफ्तर रे महीने भी इनी तरह भाई कार्य स्थल माते देखो के ऑड अवर हुए इवन अवर हुए रात हुए दो है नी
1: हाँ।
0: तो रात रे महीने सरकारी हॉस्पिटल में महिलाओं काम करे महिला नर्स काम करे महिला डॉक्टर काम करे। तो धीरे धीरे आप आज देखा कि 10-20 साल में एडो बदलाव आयो है कि महिला भी बहुत यूं आराम हूं रात्रि जकी सरकारी नौकरी तो करी है। हमें प्राइवेट जकी टेक्नोलॉजी नी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस री कंप्यूटर जकी नौकरियां है नी में दिन रात दोनों पालियां में लुगाया काम करे तो कठे न कठे उन संस्था रो कर्तव्य है कि बाणी सुरक्षा मुजब ध्यान रख।
1: बिल्कुल सर, संस्था रो भी कर्तव्य बने जो मजदूर काम करे या जो भी कर्मचारी काम करे वाणो भी व्यक्तिगत रूप भी हो कर्तव्य आपा कह सका कि भाई आपरे काम मायने आप लापरवाही काम नहीं करनो। जो को रिस्की काम है जो को काम एड़ा है कि आपरे स्वास्थ्य रे वास्ते या आपरे शरीर वास्ते खतरो उत्पन्न कर सके वेड़ा काम मायने तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो आपा घनी बार देखा गुरविंदर भाई की फैक्ट्रिया मायने काम करे तो वाणा घनी बार कोई मशीन मायने हाथ आए जा कोई अंग भंग वे जा जो भी वाणे नियोक्ता है वाणो भी वो कर्तव्य बने कि वाणे उचित सुरक्षा उपकरण वटे मौजूद वे ताकि वे विनो उपयोग कर और आपरा काम ने सुरक्षित रूप कर सके।
2: मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया
3: ओरी मैया सुन

0: देखो के थोड़ा नियम बने, कायदा कानून बने, थोड़ी सख्ताई हुए तो ये रो असर आपने देखने मिले। हमें देखो हड़क रे माते जका काम करे तो बने, चाहे वे दोपहर में काम करो चाहे रात वाली काम करो, रिफ्लेक्टर जो टी शर्ट वे शर्ट वे वो पहनना जरूरी हो गया। तो उन्हों कहीं है कि मान लो दुर्घटना नहीं हुए, कटी सड़क है तो वे प्लास्टिक रहा वे लाल पाइप लगान उन्हें पहला बंद करे। तो क्यों ना मतलब है कि भाई देखो मिनख चाहे वो छोटो वो चाहे मोटो, हर मिनख री जान री कीमत है और ये रो आकलन जरूरी है। और जब तक सुरक्षा नहीं हुई उन गतियों उन तेज गतियों विकास भी नहीं हुआ। आप देखा कि जका विकसित देश है उठे मजदूर है मालिक मिठाई नहीं पड़े कौन मजदूर है कौन मालिक है, क्योंकि काम कामरा तरीका उगरी स्वास्थ्य और उरी सुरक्षा सरकार का कड़ा नियम सब लोग एड़ा लागे कि भाई कठे कोई कार्यस्थल माते गड़बड़ नहीं हुआ। हमें देखो अताई गणी होगी और कार्यक्रम भगत हो रही है पूरा तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आप साथी गुरविंदर विश्नोई
1: और अनिल चरण ने सीख दी रहो राम
0: राम, राम, राम।

0: पर परिवार शुरू हो जावे कि झगड़ा छोटा मोटा वह तो की कर बिना ने।
1: अरे भाई मन देखे मन मुटा हो जा मार जानी मन कह नहीं वो कह नहीं मन रो
0: मन
1: रो कह नहीं कुटल नहीं होनी
0: चाहिए। हाँ
1: मत भेद हो जा पर मन भेद
0: मन भेद नहीं बहनो चाहिए।
1: टाबरन देखो टाबर आप
0: लड़
1: ले थोड़ी टाइम वेन वो है जो
0: पाचा भेड़ा भेजा
1: तो टाबरा वाली बात है जो अपन ही
0: चाहिए।
1: और दिंदड़ा लंबाई देखा घना ही मनाई जे कई है जो कह।
0: हाँ तो आज के ही दिन है मैं आपने बताऊं राष्ट्रीय डेंगू दिवस है आज 16 महीने और वहाँ पर भारत सरकार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है नी वो इन्हें मनावे। इनमें है कि डेंगू नी व्यवन वास्ते आप कहीं कर सको इन वास्ते जागरूकता फैलानी है और डेंगू बड़ी बीमारी है
1: मतलब मलेरिया।
0: हाँ
1: आजकल और डेंगू आई को तो डेंगू तो हार्ट का तोड़ता है।
0: हाँ बिल्कुल आंखें लारे दर्द बहनो करनो तेज बुखार सर दर्द।
1: अरे मैं को हार्ट का दूजन रुक जा मारो दिन दुख किया।
0: हाँ तो सरकार के टीवी में भी एड चलावे कि आप घरे आड़े पाड़े पानी
1: चारों में साफ सफाई राखो कटे पानी भेड़ो हूं मत जे कोई कुंडी कुंडियो है तो उन्हीं है जो साफ सफाई कर राखो।
0: आपने भी डेंगू तो नहीं मेको?
1: अरे मार डेंगू कौन भाई एकदम मारो पहला हुईड़ो हो नी जो कह एकदम नाम ले तो उठाओ।
0: अच्छा याद आएगी
1: याद आएगी वाह भाई।
0: और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी आज है वो है कि सांस्कृतिक और कलात्मक क्षेत्रों में जो प्रकाश रो महत्व है नी की कर आप कोई फिल्म भी देखा हर जगह आपने प्रकाश रो एक अलग ही महत्व है।
1: अरे चांदनो
0: कोई नाटक
1: है
0: फिल्म है कोई भी है।
1: अरे चांदनो है
0: चांदनो चांदनो
1: है तो चांदनो है जो है कह नहीं कह हाँ वो कह नहीं आंगनो फड़के बढ़िया भाई देखे हीरो चांदनो ही होना सही है
0: बिल्कुल।
1: अरे गटरो चांदनो है जो तो कई दुनिया
0: मेरे चांदनो शांति आवे।
1: हाँ शांति है गटर हट बढ़िया रही कौन की नहीं छाती मात लेन हाथ गियो।
0: हाँ
1: और कह नहीं कह भला बुरा गिनी जिन जाओ नहीं तो आप कहीं शांति रो शांति रेन दो जियो और जीवन दो
0: जियो और जीवन
1: हाँ बात है ठीक है नहीं ये भाई हमें यूँ है कि मनोरमा
0: हाँ?
1: के गोना ही है जो को आज तेरा उबा है पानी कोई थोड़ा नो कह नहीं चारों कुछ नेगनो है पानी पावनो है।
0: हाँ
1: बे तो थोड़ा करना ही है पर पहला ओ मारो
0: गीत होना मैं
1: गीत होती आई नहीं और मन होना भाई ओ हरजस वे जड़ो।
0: हाँ हरजस जीव जे
1: हाँ भगवान बुद्धि वाणी है भाई।
0: हाँ
1: अब बात है होना भाई होना
0: एकदम।

0: पूर्ण चंद्र भाषा कोष एक रचना करी थी जो उड़िया भाषा इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण बहुभाषी शब्द कोश है। हाँ बहुत सारी भाषाओं और शब्द कोश है।
1: गुणी विद्वान
0: बहुत गुणी विद्वान था। एक भाषा ही नहीं आवे अपने।
1: अरे भाई पानी ने हमें देखे की भाषा में कई कई बोले।
0: बिल्कुल घने
1: तो बहन डॉट फिर भी है आप लोग शब्द कोश।
0: हाँ
1: बड़े हो तो कम बात को पेड़ा मिल गाने तो कोई नहीं भूल सके। कोटी कोटी
0: नमन
1: करा भूल चले बड़े।
0: और रूसी मोदी जी टाटा समूह का एक अग्रणी सदस्य था और टिस्को कंपनी जो आप हमें देखा बिना रहे अध्यक्ष और निदेशक भी रियोड़ा है।
1: ओ ठीक ठीक भाई देखे टाटा कंपनी तो कह नहीं पर मोटर गाड़िया
0: इनारे टाटा कंपनी में बहुत अच्छो योगदान दियो।
1: हाँ भाई देखे तो कह के भाई खानदानी काम कह आगे बदे हो और देश की तरक्की में मोटर गाड़िया बना जिको कह नहीं के भाई हारो दियो मोटी बात है। पेड़ा मिनकानी कोई नहीं भूल सके। कोटी कोटी नमन है मंदड़ेरा फूल चढ़ावा बड़े।
0: और कर्नल धर्मवीर सिंह जी वे आज दिन छोत हुआ भारतीय सेना रा एक जाबाज सैनिक था और लड़ा पाकिस्तान भारत री लड़ाई में जीत दिलाई थी।
1: हाँ दिलाई भाई कर्नल धर्मवीर सिंह जी ने कोई नहीं भूल सके। देखो पाकिस्तान में दो तीन बार है जो हमारे झगड़ो हुयो 65 में हुयो पजे है जो 71 में हुयो पजे 99 में हुयो हमारे बड़े लाडले साल आगे तारीख कह के उन दिन भड़े वे हुआ नहीं जद घाटू बम गोला पटकिया ना ने है जो कह नहीं पाजरा करिया ठीक है नहीं कहूँ ऑपरेशन सिंदूर को
0: ऑपरेशन सिंदूर
1: भूल गया कहीं
0: नहीं उनमें
1: है जो कर्नल साफिया और विंग कमांडर भूमिका सिंह और लुगई जाग झुकी जी को मठड़ा बेकानी लड़कू हवाई जहाज उड़ान माने तस नस कर दिया। मैं तो हूँ तो बात करते ही मारा देखा रू उबा ले
0: जोश आएगा आप
1: में जोश गोरी भाई तो भाई देखे कर्नल साहब ने पर बातें पर धोखदा कोटि कोटि नमन करा मंदलेरा फूल चढ़ावा और एक बढ़िया कोई गीत लो होना
0: जोश वालों गीत।
1: हाँ जोश वालों गीत है भाई की थोड़ी घनी कही है की अपने हृदय मिल जाए कोई ऐसा काम काज करने वाला वे तो देखो आजादी कोई यूं को मिली है
0: और
1: आजादी मोतियों मूंगी है और बलिदान त्याग दिया गरिया है जी को आजादी मिली तो कह नहीं कोई ने कह भाई देखो है नहीं कर दो हम जा दो भाई ऐडो कोई काम मत कर दो
0: ऐडो कोई काम नहीं करना है जो सपनों देखियो बिना
1: सपनों पूरा करा दो। ओ होना भाई

0: वाह भाई ये वाह
1: बढ़िया लागो अपने गीत
0: बहुत बढ़िया लागो जी हो रो गो अरे बात देखो हूं उन पर कह नहीं की थोड़ी घनी मारी मगज में है जी पाची कह के वो कह बेर को फेरो हो जा रही तो पज बा कहूँ एक पज मारी बा कहूँ की भाई वो चांदनो रहे गट में
1: हाँ
0: गट में चांदनो
1: रहे शांति रहे सब
0: हाँ शांति रहे भाई देखो की भाई शांति में सार है और बाकी सब बेकार है।
1: अच्छा
0: ये बात है लड़ना झगड़ना नहीं लड़ो तो हमें देखो तावड़े उन लड़ो क्या तावड़ो पड़े ही तो
1: बीमारियों लड़ो
0: हाँ भाई देखो घरों बारी मत निकलो पानी पी निकलो माथे माथे की इनकी ओट पैर निकलो और ठंडी चीज जिमो और कह नहीं भू भू करता कटे मारे कटे नहीं जाना
1: हाँ।
0: अब स्कूल की छुट्टियां पड़ गई
1: बिल्कुल
0: और सब आप कह नहीं घर में थोड़ो कह नहीं आराम कर लो और हमें भाई देखे मने आराम नहीं
1: हर जो सुझाई
0: मनोरमा बढ़िया ही घर जिस होना।

0: वाह भाई ये वाह
1: हमें
0: अरे अटे कौ कर जाग दिया को
1: अरे भेड़ू ही को भेड़ू आई जो भेड़ू बोल ले
0: अरे भेड़ू तो कह नहीं खीरा ही जी खींचनी कौन बोले रमेश ना
2: मैं तो नहीं बोला
0: नहीं बोले गोना गो, थोड़ा गोना पा क्या गोना पाओ नो सोर चार ना की को आयो टाइम मत आयो
2: टाइम मत आयो
0: आप रो काम करे
2: हां
0: यूं तो
2: खाणो खावना है
0: अरे बिने बोले नहीं भेड़ू करो ना कोनी अपर एड़ी कोई बात कोनी काम बालो है जाम बालो नहीं है अरे है नहीं नदी हो मन तो मैं देखियो भाई निपड़े तो हु तो कौन है हमें ऊटी से टा पड़ी वा भाई रे की कोनी अपर कह दे रमेश ने गोना है बे जल्दा
2: काम कर दिन बाद में खाणो खाणो है
0: भैया ने हंगन थोड़ो क्या नहीं तेरी उबी है
2: हम
0: पानी पा दे थोड़ो चारो कूचो मैग दे कोई कि भाई कोई पत्रा हतरा ड्यूटी होगा वैसे
2: और भी कोई काम वे तो कहते
0: हाँ कर दे की भाई हम देखे हूँ फेर लू माड़ा
2: हाँ
0: थे है जी को थोड़ी रसोड़ी तैयारी कराओ आज है जी को रामेश्वर ने बढ़िया सुरमियों करावा और बढ़िया है जी कह काम कर तो है जी कह बल लागी
2: हाँ
0: थे है जी को कहे कि भाई रसोड़ी तेरी पक्की करा लो
2: बिल्कुल
0: और अब तारे खासा ऊंचा आई जा है और अंदाजी पड़ गो है प्रोग्राम टाइम ही होगो पूरो तो भाई सेना लेवा ही राम राम
2: राम राम।

नमस्कार श्रोताओं, रात की शांत वादियों में चांदनी की हल्की रोशनी और दिल को सुकून देने वाले सुरों के साथ प्रस्तुत है आपका अपना फिल्म संगीत। आज के इस खास महफिल में हम लेकर आए हैं रात, चांद और मोहब्बत से सजे कुछ बेहद खूबसूरत नगमे। तो आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत। गायक है किशोर कुमार, आशा भोसले, संगीत दिया है रवि ने, गीतकार हैं शैलेंद्र।

अभी आपने सुना काला बाजार फिल्म से ये गीत खोया खोया चांद, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत दिया है एस डी बर्मन ने। दोस्तों, रात का एक अलग ही जादू होता है। कुछ लोग इस वक्त सपनों में खो जाते हैं तो कुछ लोग यादों में, और जब साथ हो पुराने फिल्मी गीतों का तो हर एहसास और भी खूबसूरत बन जाता है। तो अब पेश है एक बेहद रोमांटिक गीत, जिसे सुनकर मानो चांद भी मुस्कुरा उठे।

दोस्तों, ये सूर्य नगरी चैनल है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। चांदनी रातों में जब प्यार की बातें होती है तो संगीत अपने आप दिल की धड़कन बन जाता है।

अभी आपने सुना बरखा फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, संगीत दिया है चित्रगुप्त ने।

अभी आपने सुना सोने की चिड़िया फिल्म का ये गीत, आवाजें दी है मोहम्मद रफी और आशा भोंसले ने। संगीत है ओपी नैयर। ये आकाशवाणी का सूर्य नगरी चैनल है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना राम और श्याम फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और संगीत दिया है नौशाद ने। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना बात एक रात की फिल्म का ये गीत जिसे गाया है सुमन कल्याण पुण्य। बोल है मजरूह के, संगीत दिया है SD वर्मन ने।

अभी आपने सुना ये रात फिर ना आएगी फिल्म का ये गीत, फिर मिलोगे कभी, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

तो दोस्तों इन्हीं मधुर गीतों के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है चांदनी रात का यह सुरीला सफ़र आपको पसंद आया होगा। अपने सपनों को मुस्कुराने दीजिए और संगीत को दिल में बसाए रखिए। तो मैं लेता हूँ आपसे विदा।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। वक्त हो रहा है समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9 का, जिसे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के

0: की सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय

0: अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: news on AIR.gov.in and news on AIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: तारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जी.डी. माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाई चाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेश।

0: राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी, संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
0: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान, तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी।
1: तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा।
0: फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
2: चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
0: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: की जिक्र के सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन, 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज़।

फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाईच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूसरी।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राजखोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू है

मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख से

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो।
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है।
4: सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो।
0: फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है। नए सिरे से अपनी

0: 2018 में आई बधाई हो। इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक
1: चुपके

के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती

0: वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है, वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD 2।

0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
1: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दर आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं। क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो एल बी लक्ष्मण जी ने खरीद लिए और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नयन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नयन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला रहा हूं, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन किसी की

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया है।

ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र हैं। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना के माध्यम से किराना घराने की परंपरा

0: धारा को आत्मसात किया। उनकी संगीत साधना केवल एक घराने तक सीमित नहीं रही, उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा कर विभिन्न घरानों की शैली, तकनीक और भावधारा का गहन अध्ययन किया तथा उसे अपने गायन में सफलतापूर्वक समाहित किया। उनकी इसी विशिष्ट साधना के परिणाम स्वरूप उन्हें 32 वर्ष की आयु में भारत सरकार द्वारा टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीकॉम, संगीत में बीए तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से संगीत में एमए स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया है और आपको कर्नाटक सरकार का राज्य पुरस्कार, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी राष्ट्रीय सम्मान ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप देश और विदेश में कई प्रमुख मंचों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित कैवल्य कुमार गुरव। पंडित कैवल्य कुमार गुरव इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन एंड डिसाइपल ऑफ पंडित संगमेश्वर गुरव। ही स्टार्टेड हिज म्यूजिकल जर्नी एट द एज ऑफ 15 विथ मराठी नाट्य संगीत। After that, he turned towards khayal singing and through the guidance of his father and guru, Pandit Sangameshwar Gurav, absorbed the traditions of Kirana Gharana through rigorous practice and dedication. His musical practice was not limited to just one gharana. He travelled across India, deeply studying the styles, techniques and emotional expressions of various gharanas and successfully incorporated them into his singing. As a result of this exceptional dedication, he was honored with the title of Top Grade Artist by the Government of India at the age of just 32. Pandit Kaivalya Kumar Gurav has performed his music not only across India but also in many countries around the world. He has been awarded an honorary doctorate by Sorbonne University, Paris of France. Dr. Kaivalya Kumar Gurav has been honored with more than 200 awards worldwide.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित जडेश होगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरव अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पिया से। उसके बाद द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद राग दुर्गा, रूपक ताल, रस कान्हारे, द्रुत एक ताल, लागी लगन तोरे पियासे, द्रुत तीन ताल, चतुर सुगर।

0: पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।
1: दैट वॉज राग दुर्गा। नाउ यू विल लिसन टू राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तीन ताल आ रंगीला आ।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग आबोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया गया।
1: That was Raag Abhogi. With that, we come to the end of tonight's national program of music, in which you were listening to a vocal recital by Pandit Kaivalya Kumar Gurav. He was accompanied on the tabla by Pandit Jadesh Hugar and on the harmonium by Dr. Sudhamshu Kulkarni. This program was recorded earlier in the studios of Akashwani Dharwad and relayed from Akashwani Delhi.

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। समय है हिंदी और अंग्रेजी समाचार का, जिसे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में

0: अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently